Suryavanshi ke kamal ki performance in IPL and everybody praising about him and then कहा गया कि भाई इंडियन जो कि टीम है हमारी क्रिकेट की उसमें इनका नाम बिल्कुल शामिल किया जाएगा. सो वेल ओडीआई यानी कि वन डे इंटरनेशनल की जिस सीरीज में फिलहाल ये खेल रहे हैं उसकी बात करते हैं. सो इंडिया के एज सुपर ओवर में ये हारे टू श्रीलंका के ए टीम से एंड इट टर्न कॉन्ट्रोवर्शियल क्योंकि हुआ एक पोस्ट मैच एक्सचेंज इन्वॉल्विंग हमारे वैभव सूर्यवंशी जो है एक अग्रेसिव कॉन्फ्रंटेशन करते हुए वो नजर आए एंड दिस इज जस्ट वन क्लिप विच इज गोइंग वायरल एंड इतनी बातें उस चीज को लेकर. सो इट्स जस्ट वन दिस थिंग कि वैभव जो है दनदनाते हुए वापस जाते हैं एंड उन्होंने श्रीलंकन एक प्लेयर को धक्का मारा. उनके साथ आई थिंक तिलक वर्मा है साथ में. सो दे फिर दूसरे प्लेयर्स जो है वो बीच में आए इन लोगों को अलग अलग करे एंड जस्ट उस एक क्लिप के बेसिस पे एवरीबॉडी हैज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स कि बस यही हम लोग भी तो यही कह रहे थे. इतनी बातें कर ली वैभव सूर्यवंशी के बारे में कि अब उसका सर चढ़ गया है, अब उसका एरोगेंस जो है वो बोलने लगा है, इसी तरह से जो है हाथ से निकल जाती है सिचुएशंस एंड ऑल दोस थिंग्स. द सिचुएशन बेसिकली एस्केलेटेड बिफोर द टीममेट्स एक्चुअली इंटरवीन टू सेपरेट ऑल दीज प्लेयर्स सो दैट ये बात और आगे नहीं बढ़े. तो वेल ये सारी बातें आगे पीछे उसके क्या हुआ किसी को इतना ज्यादा खबर नहीं है. नोबडी केयर्स टू फाइंड आउट एज वेल. उससे पहले जो है काफी गहमा गहमी ऑलरेडी हो चुकी थी एंड वाइल वैभव अपना जो है हेलमेट उतार के वापस जा रहे थे विदाउट डूइंग एनीथिंग विदाउट सेइंग एनीथिंग देयर वर प्लेयर्स ऑपोजिट टीम से जिन्होंने बार बार बार बार कुछ कहकर वैभव को काफी प्रोवोक किया टू विच वैभव जो है वापस गए एंड ही डिड व्हाट ही डिड. सो वेल दैट इज दैट. वही ना जो लोग आपको ऊपर चढ़ाते हैं और आपके लिए इतना सब कुछ कहते हैं वही लोग बाद में एंड आई थिंक सोशल मीडिया हैज काइंड ऑफ बिकम अ ग्राउंड ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आई थिंक जस्ट वैभव सूर्यवंशी जस्ट फोकस ऑन योर गेम दैट्स ऑल. या लोगों की सुनने बैठ जाए तो हम लोग कभी कोई काम कर ही नहीं पाएंगे ना, है ना. काम की बात. गुड मॉर्निंग.

0: Singapore, prepare for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
4: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
6: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
7: Good morning.
8: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंतरा।
9: 8:17 रेडियो मस्ती 24/7 लाइव में अंतरा आपके साथ यहाँ पर और चल रहा है मस्ती का मंत्र। नाउ द थिंग इज कि भाई बहुत सारे, अब ये बच कुछ ही महीनों पहले की बात है जब अरिजीत सिंह ने ये कहा था कि भाई अब मेरे से हो गया, मुझे जितना करना था आई थिंक मैंने कर लिया है और अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। एंड आई गेस व्हाट Whose name is next? प्रीतम दा। प्रीतम दा का नाम आपने सुना होगा, प्रीतम दा के गाने हमने बहुत ज्यादा सुने हुए हैं एंड कई बार हुआ है कि प्रीतम दा के नाम को आपने कई सारे कॉन्ट्रोवर्सीज में भी पाया होगा। वो इस बात की भाई उनके गाने जो है यहाँ से इंस्पायर्ड है, वहां से इंस्पायर्ड है, भाई एट द एंड ऑफ इट मुझे लगता है जहां से भी इंस्पायर्ड हो हम चलाते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम सुनते हैं, दैट इज वॉट मैटर्स मोर। बट हाल ही में प्रीतम दा जो है उन्होंने अपना सोशल मीडिया पे जब ये पोस्ट डाला, सो एवरीबॉडी इज लाइक कि क्या अब प्रीतम दा भी जो है ब्रेक ले रहे हैं या रिटायर हो रहे हैं। सो ही रोट, थैंक यू फॉर ऑल द विशेस, कांट आंसर एवरीवन इंडिविजुअली बट प्लीज एक्सेप्ट माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड। टुडे आई हैव डिसाइडेड टू गिफ्ट मायसेल्फ अ फ्यू इयर्स टू लिव लाइफ डिफरेंटली टू कैच अप ऑन व्हाट आई हैव मिस्ड, टाइम टू सेट ऑफ ऑन अ न्यू जर्नी व्हिच हैव आई बीन कीपिंग ऑन द बैक बर्नर फॉर लॉन्ग। मेनस्ट्रीम इज ग्रेट राइट but I have always been more curious about the roads unexplored. Thank you for all the love and support. Yes. Yeah, so speculation itni zyada high ho gayi hai ki bhai so definitely is going on a break, but he want to explore something else. And that's exactly what Arijit Singh also said when he said ki bhai ab main mainstream mein to nahi karunga. There's always that one point, right? Saturation aapka hit ho jata hai ki ho gaya yaar, bas ho gaya. And it is not easy to come and stand and maintain that position where these guys are at. Bahut, it comes with a lot of pressure. So, I guess everybody needs their space. And humko us baat ki, us cheez ki respect karni chahiye. Yep. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर कभी सोचा नहीं था इस तरह से इन लोगों के इस तरह का रिटायरमेंट की बातें करूंगी, बट देन या हियर इट इज। गुड मॉर्निंग।

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: बाजू
5: ट्रैफिक अपडेट।
6: इट्स 8:31 बाय द स्टूडियो क्लॉक। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतरा आपके साथ यहां पर चल रहा है मस्ती का मंत्रा, बट इट्स टाइम फॉर ट्रैफिक का अपडेट। व्हीकल ब्रेकडाउन इस वक्त आपको उमिनेगा नेवाई ई टुवर्ड्स एमसीई आफ्टर यू ऑन चेक रोड। व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन पीआईई टुवर्ड्स चांगी आफ्टर जलान बहार, और मिलेगा इस वक्त हैवी ट्रैफिक ऑन पीआईई टुवर्ड्स चांगी एट बुकित बैतोक रोड एग्जिट। वेल, ये तो रहा हमारे ट्रैफिक का अपडेट, लेकिन देयर इज अनदर अपडेट जो कि काला हिरन के सेट से लेकर आने वाले हैं। हर कोई अलग कहानी वहां पर बता रहा है, बट व्हाट्स द कैओस इन द जंगल, लेट कम बैक एंड टेल यू। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर कमिंग अप नेक्स्ट इज वेलकम टू द जंगल, टाइटल ट्रैक है उसका।

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: चलो चलो बताया जाए तसल्ली से कि क्या क्या और हो रहा है. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ 8:36 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में. एंड इट वाज जस्ट यस्टरडे कल शाम के शो में जो है मैंने आपको ये अपडेट दिया था. नाउ दिस मूवी कॉल्ड काला हिरन, इट्स ऑल ऑन दी ब्लैक वर्क वाला पोचिंग वाला केस, सलमान खान से के उस केस से इंस्पायर्ड एंड एवरीथिंग. इसका जो है ट्रेलर इन्होंने ऑलरेडी रिलीज कर दिया और जो फिल्म मेकर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत थ्रेट्स वगैरह मिल रहे हैं एंड मैं सलमान खान को कहना चाहता हूँ कि जो खाना है वो खा ले एंड ऑल दोस थिंग्स हैपेंड. उसके बाद इस मूवी में ट्रेलर में नजर आए अ वेरी बिग एंड रेस्पेक्टेड एक्टर गोविंद नामदेव जी, तो वो भी बाहर निकल के उन्होंने कहा कि भाई मुझे पता नहीं था अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मुझे बहुत ही उसमें स्टोरी को अंडर द रैप्स रखा गया था एंड एवरी थिंग. नाउ गेस हु हैज कम आउट इन द लाइट. सो इस मूवी काला हिरन में जो ये बंदा है जिसने एक्चुअली में सलमान खान कैरेक्टर निभाया है इन द मूवी, नाउ ही इज आउट. ही इनका नाम है सोनू मिश्रा एंड ये कह रहे हैं उन्होंने ये मूवी ऑलरेडी छोड़ दिया अपेरेंटली. सो वेल ही डिस्कवर्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड हिम टू पब्लिकली स्पीक अगेंस्ट द superstar Salman Khan and he shot for 2 days before demanding the agreement which revealed the one-sided anti-Salman narrative calling it against his ethics. Ab keh raha hu main yahan pe bahut sara kuch chahti hu but trailer जो है ट्रेलर टीजर जो भी कह लीजिए वो रिलीज होने के बाद में भाई एक कहावत है कि मगरमच्छ से बैर देने का कोई सेंस बनता नहीं है एंड स्पेशली जब आपका नाम किसी को भी नहीं पता है और ऑल दोस थिंग्स. काफी सारे लोग काफी कुछ जो है कमेंट्स में यही सब लिखकर उनको भेज रहे हैं कि हाँ सर पता तो आपको सब कुछ था क्योंकि शूटिंग तो आपने की ही होगी क्योंकि टीजर में आप नजर आ रहे हो, कैसे आप कह सकते हो ऐसा कुछ. सो वेल अपेरेंटली उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनको काफी कुछ सलमान खान के अगेंस्ट बोलने के लिए कहा गया था विच ऑब्वियसली ही डिडंट लाइक इट सो ही हैज लेफ्ट द मूवी. बट फिल्म मेकर तो कह रहे हैं कि वो जो रिलीज करेंगे करके रहेंगे करके मानेंगे. कि अभी तक यही कंफ्यूजन चल रहा है कि ये क्या चल रहा है, क्या अल्टीमेटली ये मूवी रिलीज होगी या नहीं होगी जानने के लिए बिल्कुल सुनते रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे इसके बारे में. टेंशन मत लो, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर कमिंग अप इज अ वेरी वेरी हैप्पी सॉन्ग. आई लव दिस गाना, जितनी बार सुनती हूँ मैं खुश हो जाती हूँ ये गाना सुनकर एंड दिस सॉन्ग हैज दैट थिंग टू इट. गुड मॉर्निंग.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: 3, 2, 1।
0: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
3: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: Har Tuesday, ek naya twist. Masti ka mantra with RJ Antra.
0: 8:49 हो चुका है स्टूडियो क्लॉक में, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, मैं हूं अंतरा आपके साथ और यहां पर चल रहा है मस्ती का मंत्रा। एंड क्या होता है कि जब हम लोग भी ऐसे ऑफिस आते हैं एंड स्टूडियो आते हैं एंड बीच बीच में स्टूडियो के बाहर स्टेप आउट करते हैं, फिर लगता है कि कुछ हेल्दी अगर मिल जाता खाने को तो कितना मजा आता, जस्ट फॉर द स्नैकिंग बिट। अब पूरा प्रॉपर इस टाइम पे बैठ कर तो कुछ होता नहीं है एंड दैट इज व्हाई वी ऑलवेज कीप नट्स विद अस। यस, वी हैव गॉन nuts with the nuts, and especially jab wo Krishi World ke nuts ho to pura banta hai us pe nuts jana. That is right bhai, ye jo jitne bhi dry fruit lovers, so there are a lot of people who love dry fruits, chahe wo cashews ho, chahe wo roasted almonds ho, ya fir you know pistachios ho. Krishi World ke dry fruits aapne try kiye hain? It is available on ggmartonline.com and it's like if you love to munch and aapko lag raha hai ki kuch zyada aisa nahi hai, bas thoda sa kuch agar side mein hota to fir I think you should and you must try Krishi World ke nuts. Pure natural goodness ke saath with ingredients you can trust and the flavors which you will absolutely love. Bhai, ek to ye Krishi World wala jo brand hai ggmartonline.com mein jo milta hai, it's farm fresh. ठीक है, एंड 100% ऑर्गेनिक है, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है एंड सस्टेनेबल इको फ्रेंडली पैकेजिंग में आता है, ऑफ कोर्स फॉर द बेटर प्लैनेट। मैकेडेमिया नट्स हो गए, रोस्टेड एंड सॉल्टेड पिस्टाशियोस हो गए, हेजल नट्स, पम्पकिन सीड्स, सॉर्टेड पैकेट्स नट्स के एंड प्रीमियम नट्स जो है, कैलिफोर्निया आलमंड्स एंड प्रीमियम कैशूज, ऑल ऑफ दीज, मतलब बहुत सारी वैरायटी जो है। यू जस्ट हैव टू लॉग ऑन टू ggmartonline.com एंड गो एंड चेक आउट ऑल दीज। जस्ट कृषि वाला आप अगर ट्राई टाइप करोगे ना उनके सर्च बार पे, देन पूरा का पूरा आपके जितने भी इनके वैरायटी है सब वहां पे मिल जाएगा एंड इट इज एक्चुअली जेन्युइनली वेरी वेरी गुड। यू हैव टू गो ऑर्डर, ट्राई वंस एंड देन ओनली यू कैन यू नो यू विल एक्सपीरियंस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसी बात पे हम एक और राउंड बार मार के आएंगे और कुछ और नट्स खा के आएंगे। आप यू डोंट गो नट्स, यू गो टू ggmartonline.com।

साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश, योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वाइल्ड एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व्ड फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म, यू सी। ट्यून इन टू मी ऑन मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। पहुंच चुके हैं 9 बज गए उस पार, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। गुड मॉर्निंग, मस्ती का मंत्रा चल रहा है अंतरा के साथ। भाई 9 बजकर हो चुके हैं 6 मिनट, बातें करते करते भाई 2 घंटे कहां निकल गए। इट इज 2 घंटे क्या, ऐसे करते करते जो है 16th जून तक हम लोग पहुंच गए यार। जून का आधा महीना खत्म हो गया, क्या ही चल रहा है यहाँ पर। बट देन वेल भाई, मूवी तो आपको ये वाली याद होगी, लगान, 3 गुना लगान देना पड़ेगा। वी कैन नॉट फॉरगेट द डायलॉग्स, वी कैन नॉट फॉरगेट द एक्टिंग, ईच एंड एवरी कैरेक्टर वो सो स्पेशल। और जब हाल ही में जब इतने 25 साल का सेलिब्रेशन जो है वो रहा लगान मूवी का, एंड द होल कास्ट एंड क्रू गॉट टुगेदर अलॉन्ग विद ऑफकोर्स आमिर खान तो थे ही थे, आशुतोष गोवारिकर वॉज देयर, जावेद साहब वॉज देयर, बट अपार्ट फ्रॉम देम ऑल दीज जिन्होंने वो ब्रिटिश कैरेक्टर्स जो निभाए थे, एवरीबडी वॉज देयर। उनके भी जो है इंटरव्यूज वगैरह काफी फ्लोट कर रहे थे, बड़ी मजेदार एक बात जो है लोगों ने बताई। सो वी हैव हर्ड दैट सॉन्ग, सी ऑल द सॉन्ग्स वर ऑल्सो नाइस बिकॉज रहमान साहब का म्यूजिक कैसे ही उसमें आप क्या ही बोलोगे, ऑल द सॉन्ग्स वर जेन्युइनली वेरी वेरी गुड। तो वो जो एक बड़ा मोटिवेशनल सा गाना है ना, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, चले चलो चले चलो, यू नो अक्सर हम लोग इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे वाले दिन पर ये वाला गाना जरूर बजाते हैं। एक अंदर से एकदम वैसी वाली फीलिंग आती है कि हाँ चले चलो चले चलो। बट ओरिजिनल जो है, जो जब ए आर रहमान साहब ने म्यूजिक बनाया था, देर वॉज ओनली म्यूजिक एंड इंस्टेड ऑफ चले चलो, सो वेन यू मेक अ स्क्रैच ऑफ म्यूजिक देर इज ऑलवेज सम अदर वर्ड। ये तो बाद में जब लिरिसिस्ट के पास जाता है तो फिर लिरिसिस्ट उसमें बोल बिठाते हैं। तो नशा नशा नशा नशा, सो इंस्टेड ऑफ चले चलो इट वॉज ट्यून थी ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना। जब आशुतोष गोवारिकर और आमिर खान ने ये वाला धुन सुना विद नशा नशा, दे फाउंड कि भाई पूरी धुन में कुछ भी बदल दो लेकिन ये जो नशा नशा है ये नहीं बदलना चाहिए। दे गॉट सो यूज टू इट बिकॉज उन्होंने कई बार ये चीज सुन ली थी। अब ये पूरा का पूरा सेट गया म्यूजिक का हमारे जावेद साहब के पास, जो उनको लिखना था इस पे लिरिक्स। अब जब इनको कहा गया कि नहीं नशा नशा नहीं हटेगा, बाकी तो आप कुछ भी लिख दो, हमें मतलब आप पे पूरा भरोसा है, जावेद साहब कहते हैं कि आप जरा सीन देखिए और समझिए कि 3 साल से इस गांव में बारिश नहीं हुई है, सूखा पड़ा हुआ है, लोगों की हालतें यहाँ पे खराब है, ऊपर से 3 गुना लगान और इन्होंने चढ़ा लिया है अपने सर, और ये हमें कह रहे हैं कि इस गाने में इस वक्त सिनारियो पे लिख दे नशा नशा नशा नशा। अब कहाँ से लिखे नशा नशा, ये कौन सा वाला नशा है जो हम बताना चाहते हैं। So these things happen. Of course, Nasha Nasha was not kept, and then it was Chale Chalo Chale Chalo. It became epic. Everybody till date, we all take it as a motivational song because of the word Chale Chalo. The great Javed Akhtar, I love him. The way he talks, you know, जब वो उन्होंने रेणुका के साथ भी interview किया, oh my God, he's so good. Love it. If you have not watched that, you can go back to the Masti ABI tab and go and watch that interview. It's a fantastic one. Well, lagan ki baat ho gayi, not that one, but this one definitely. I just wanted to play. Ghanan, ghanan, ghanan, ghanan, ghanan. And now, play kare, let's go.

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंत्रा।
3: सवाल पूछू पक्का पूछू। चलो बताओगे, ट्राई कर लो। ईआरपी, ये जो है तीन लेटर्स आपने सुना ही होंगे वेरी वेरी रेगुलरली सिंगापुर में। बस ईआरपी क्या स्टैंड करता है सिंगापुर के रोड सिस्टम में? हु विल टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ ईआरपी? बताओ। लाइन सिटी चैलेंज का भी ये चल रहा था ना, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही शुरू करते हैं। बताओ कि क्या सोचते हो। अगर आपको इसका जवाब पता है तो देन वेरी गुड, राइट, लिखकर भेज दो मुझे 9151-8963 पर, है ना। और उसके बाद ये सोचना कि जब ये सारी चीजों के जवाब आप दे सकते हो, देन यू हैव टू टेक दैट वन मोर स्टेप, typing L-I-O-N, lion, and send it to us 9151-8963 पर, because Lion City Challenge में भी इस तरह के सवाल जो है आपसे क्या पता पूछे जा सकते हैं। And when you are aware about so many things और आपकी knowledge उस level पे है, then you have to be a part of the Lion City Challenge, the smartest game show ever, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीत knowledge की ही होने वाली है। So you think you are one of that those people who are just like the perfect fit for it, and then just text us lion lion bhai. Sabse pehle to aapko phase 1 par karna padega, jahan pe hum aapse do sawal puchhenge, and then aap uska jawab hame bhejoge, and then it will move on. Sahi jawab aane ke baad move on to the second phase, and uske baad jo hai ultimately it is going to be that one big game show jahan par jo hai spotlight zarur aap pe hogi, but kafi kuch jeetne ko bhi bilkul milega, बट सब आपके ऊपर है। अगर आपने सही जवाब दिया, आप आगे बढ़ते हुए गए, then you can, क्या कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो सोच कर ही एक्साइटमेंट हो रही है, but well, उस एक्साइटमेंट की शुरुआत सिर्फ आपके एक कदम से होगी, एंड दैट कदम भी नहीं, एक टैप, कुछ टैप्स, चार टैप्स, L I O N and enter, पांच इनफैक्ट, एंड भेज दीजिए हमें फटाफट से। वी आर पार्ट ऑफ द लायन सिटी चैलेंज, वी आर वेटिंग। गुड मॉर्निंग।

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: आइए चलते हैं सीधा सिंगापुर के सड़कों की ओर और आपको बिल्कुल बताते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है सड़कों पे ट्रैफिक का हाल एंड अचाल। वेल इस वक्त चल रहा है रोड वर्क्स ऑन टीपीई टुवर्ड्स एसएलई एट कैंपिनस एवेन्यू 7 एग्जिट। रोड वर्क्स की खबर है ऑन पीआईई अगर आप जा रहे टुवर्ड्स चांगी आफ्टर जोरोंग वेस्ट एवेन्यू 2 अवॉइड करें लेन नंबर 1। और एक्सीडेंट की खबर है ऑन एवाईई टुवर्ड्स टुवर्स आफ्टर लोअर डेल्टा रोड इसका कंजेशन आपको मिलेगा टिल टिलोक ब्लंगा रोड अवॉइड करें लेन नंबर 1। ध्यान से गाड़ी चलाएं जोश और होश दोनों को काबू में रखते हुए आगे बढ़ते हुए जाए। फिलहाल हम यहां से आगे बढ़ते हैं और बरेली की बर्फी से ये वाला गाना जो है बिल्कुल आपके लिए लाते हैं ऑन द एयरवेव्स ऑफ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। गुड मॉर्निंग।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, दैट टू विद अ हाइब्रिड मॉडल फॉर योर कन्वीनियंस। 12 आवर्स ट्रेनिंग पर लेवल, फ्लेक्सिबल इंडिविजुअल फोकस सिलेबस ऑफर्ड फॉर 14 ईयर्स ओल्ड एंड अबव। Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: एक और मूवी जिसने 25 साल पहले जो है गदर मचा दी थी और उनका भी बस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है चल ही रहा है एंड उनसे भी कुछ ऐसे ही एनेक्डोट्स पता चले हैं. रेडियो मस्ती 24/7 ट्रैप के साथ 9:39 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में. भाई अनिल शर्मा जी की गदर की बात कर रही हूँ, वही गदर जहाँ पे हमारे सनीपा जी ने पंप वंप उखाड़ के एकदम अलग कर दिया था. व्हाट अ सीन दैट वाज. बट टिल डेट गदर एंड इनफैक्ट जो गदर 2 भी आई थी उन्होंने अपना एक जगह जो है ऑडियंस के दिल में जरूर बना लिया. सो 25 इयर्स के कंप्लीशन पर जो है जो गदर जिन्होंने ओरिजिनली बनाई थी अनिल शर्मा जी जो है सकीना का जो कैरेक्टर है जो कि विच वाज प्लेड बाय अमीषा पटेल ओके अपेरेंटली उनको बस रख लिया गया था बट उनकी एक्टिंग वीक थी. दैट्स व्हाट ही सेड. भाई उन्होंने कहा कि चांद जैसा चेहरा चाहिए था, एक्टिंग में ये लड़की यानी कि अमीषा पटेल थोड़ी वीक थी. मैंने नितिन केनी जो कि प्रोड्यूसर थे इस मूवी के उनसे कहा कि सूट तो मुझे ये कर रही है लेकिन एक दूसरी लड़की है वो बेटर एक्टर है, मगर ये पर्सनैलिटी वाइज अमीर घर की लड़की है तो वो इसके अंदर वो वाली बात है जो एटीट्यूड हमें एक्चुअली में चाहिए है. एंड उसके साथ साथ अगेन ही ऑल्सो टुक अ डिग ऑन अमीषा का एटीट्यूड जो कि भाई वो तो बड़े घर की जो बेटियां होती हैं उनके मिजाज थोड़े से बड़े होते हैं बट दिल की बुरी नहीं है, दिल की अच्छी है और थोड़ी सी तुनक मिजाजी सी है उनकी. बट हम लोग थोड़े छोटे घर के लोग हैं, हम लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, वो भी रहती हैं बट थोड़ा सा एटीट्यूड एक अदा जो है उनमें कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है. वो वाला डायलॉग नहीं है शोले का कि मौसी ये करता है वो करता है सब कुछ गलत गिनवा के कहता बट लड़का हमारा हीरा है. सर क्या ही बोल गए आप तो. बट वेल अमीषा एंड साथ साथ में सनीपा जी उन्होंने यही कहा कि 25 साल के कंप्लीशन के बाद कि ये जो गाड़ी है गदर की वो यूं ही आगे बढ़ती हुई रहेगी. क्या ये एक छोटा सा हिंट था कि गदर 3 भी कुछ ऐसी इन टॉक्स है. गुड मॉर्निंग शनाली शनाली यहाँ पर जो है ट्यून इन हो चुकी है एंड बिल्कुल एकदम सौदा खरा खरा हो गया है अब. तुम्हारा इंतजार था.
2: और लोगों की सारे सुनो सुनो स्टार्ट होने लग गया, तुम भी

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू जी जी मार्ट ऑनलाइन .com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोर स्टेप.
0: वाजी, क्या बात जी.
1: Order today from Gigi Mart, your personal grocer.
2: Are you ready?
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151 8963.

0: नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
1: अब वक्त हो चुका है कि ये स्मॉल टाउन गर्ल आपसे कहे बाय बाय। जी हाँ, जरा घड़ी की तरफ ध्यान दीजिए, 10 बजने वाले हैं। सुबह 7 बजे की आई हुई हूँ मैं रेडियो 24/7 लाइव अंतरा के साथ, यहाँ पर थी मस्ती का मंत्र। ऑफ कोर्स इट्स अ ट्यूसडे मॉर्निंग, इट्स 16th of June एंड आई हैड अ फैंटास्टिक यू नो टाइम विद यू ओवर हियर। फिलहाल के लिए तो मैं जा रही हूँ, फिर 1 घंटे का हमारा कैफे का ब्रेक एंड वहां पर कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक एंजॉय करें और उसके बाद हमारी नुपुरवा आ जाएगी वहां पर मस्ती मॉर्निंग्स लेकर, एंड देन होगी आपसे शाम को मुलाकात ऑन डियर मस्ती दिल से। यस, हमारा वो शो जहां पे होती है चिट्ठियां, जहां पे होते हैं सिचुएशंस, जहां पे होती है बातें, लेकिन वो होता है एक बहुत ही सेफ स्पेस। वो एक ऐसी जगह है वहां पे होते हैं जो है हम डियर मस्ती और आप बन जाते हो डियर लिसनर्स। कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ जो है बातें। एंड कई बार ऐसा होता है, लोग हमें लिख के भी भेजते हैं कि दिस इज सो रिलेटेबल, राइट, कि ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ है। तो जब कभी भी आप शाम को 5 बजे डियर मस्ती दिल से शो पे ट्यून इन करें, आपको कुछ ऐसा लगा करे कि आपको भी इस बारे में कुछ कहना है, या फिर आपने इस चीज को आप किसी और नजर से देखते हैं, तो फील फ्री टू राइट टू अस 9158963 पर। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि अब हम जाएंगे ब्रेकफास्ट की ओर जो इंतजार कर रहा है हमारा। इस टाइम तक तो सबर तो भूख लग जाती है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड यू ऑल हैव अ amazing and a fantastic day ahead. Bye bye and take care.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं. Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
2: Only on Radio Musty 24/7 Live. A part of Musty Media Network Singapore.
3: Stop the music, people, sing it!
4: नाचने का मन है मेरा भी. आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी. व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस.
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.
5: चेक इट आउट.
6: मेरे करण अर्जुन आएंगे
0: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे. हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे. मस्ती म्यूजिक कैफे.

वाकई ये गाना जब मैं सुनती हूँ ना, मुझे याद आ जाती है उन दिनों की दिल्ली में सर्दियों में, है ना, जब रजाई में लेट के और ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती चला करता था। ओह माय गॉड, मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूँ, बट डेफिनेटली आई somehow get those thoughts back in my mind. Good morning everybody, this is Renuka with you, welcome to the morning show. Serious headlines with a not so serious vibe, only on the morning show on Radio Masti 24/7. गुड मॉर्निंग सपना जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल पुराना गाना होगा तो आप ही के लिए होगा। चलिए चलिए जल्दी से मुझे बढ़िया बढ़िया खबरें दीजिए कि आज की जिंदगी में चल क्या रहा है, और मैं आपको बताऊंगी खबरें क्या हो रहा है दुनिया भर में। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा सौदा है, आप अपनी जिंदगी बताइए, मैं सारी दुनिया की बातें बताती हूँ रेडियो मस्ती 24/7 पर। वेलकम है जी, वेलकम आपका बहुत बहुत, बिल्कुल इट्स अ ब्यूटीफुल मंडे, आई एम श्योर मौसम और भी बेहतर हो जाएगा। पिछले हफ्ते आप जानते हैं 20 point something डिग्रीज पर पहुंच गया था यहाँ का मौसम सिंगापुर में, तो बड़ी हैरानी हुई, इसे फील नहीं हुआ मेरे को, फील फिर भी गर्मी और ह्यूमिडिटी लग रही थी, लेकिन न्यूज़पेपर्स ने कुछ ऐसा कहा तो मुझे लगा वाह भाई, मतलब मौसम वाकई बदल रहा है। लेकिन आज की शुरुआत करेंगे हम एक बढ़िया के बढ़िया से कोट के साथ में, जो हमेशा करते हैं। ये गाना भी बहुत प्यारा है, मोह मोह के धागे, सुनेंगे थोड़ी देर में। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं भाई कि आज का कोट ऑफ द डे क्या है, तो भाई मैं तो यही कहूंगी, इफ यू सी समवन विदाउट अ स्माइल टुडे, गिव देम योर्स। जी हाँ बिल्कुल, अगर कोई भी दुखी लगे, परेशान लगे, स्ट्रेस्ड आउट लगे, तो थोड़ा सा स्माइल उसकी शक्ल पे लेकर आना, एंड यू विल फील सो सो सो अमेजिंग, आई प्रोमिस यू दैट। रेडियो मस्ती 24/7, बढ़ते हैं हमारे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के पास, और फिर बस वापस आते ही लेट्स गेट रेडी for the news and the updates from across the world. This is Renuka with you. This is Radio Masti 24/7, a part of Masti Media Network. And yes, this is the morning show.

0: listen to Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: अजीब गल है जी, यादों पे अपना कंट्रोल ही नहीं रहता है। मैनू ओपल याद नहीं जब मैं पैदा होया, मेरी पहली दिवाली या मेरा पहला खाया परौंठा मैनू याद नहीं, पर दुनिया की सब तो मीठी आवाज जब मैं पहली बार सुनी वो पल मैनू अज भी याद है। इन्ना सोहना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था जी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beer.

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
0: जोश में रहो।
2: कितना वक्त हो गया लोगों ने इस डिटॉक्स प्रोसेस के बारे में बात ही नहीं की। क्यों? क्योंकि इसके बिना रहा नहीं जा सकता। हेलो हाय, मैं आरजे अनुपम रेडियो मस्ती 24/7 लाइफ पर वंस अगेन आपसे मुलाकात करने के लिए आ चुके हैं। एंड द पॉइंट इज कि आपने सुना होगा कि आसपास आजकल कोई भी डिजिटल डिटॉक्स के नाम पर अपना इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक, अपना लिंक्डइन, अपना एक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, उन्हें डीएक्टिवेट नहीं कर रहा है। क्योंकि एट द एंड ये बात पक्की हो चुकी है कि बिना सोशल मीडिया प्रेजेंस के आपकी खुद की पर्सनालिटी या आपकी बिजनेस की जो एक परफॉर्मेंस है वो कहां दिखाई जाएगी, क्या किया जाएगा। दीज प्लेटफॉर्म्स आर द ट्रेंडिंग थिंग जिसको फॉलो करके आप चीजें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो चलो ठीक है, इस डिटॉक्स प्रोसेस के बारे में हम भी बात नहीं करके आगे बढ़ते हैं, बिकॉज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के सिर्फ यही ऐप पर ही नहीं, हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर भी आपको सारी इनसाइट्स मिलती हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, आती हूं मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning.
4: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
5: हाँ जी जी,
4: आधा kg मसूर दाल,
5: जी जी,
4: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
5: जी जी।
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
4: क्या जी?
5: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
4: वाह जी क्या बात जी।
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें एकदम फिक्स्ड होती हैं, मतलब जनवरी में हमें रेजोल्यूशंस लेने होते हैं, दिसंबर में हमारी जितनी लड़ाइयां हैं, जितने काम हैं उन्हें सुलटाने होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम ईयरली फॉलो करते हैं, तो ऐसे में सलमान खान भी अपने पुराने रूल को बरकरार रखे हैं। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर। अगर आप सोच रहे हैं कि उनका बैचलर वाला रूल, तो वो तो वैसे ही रहेगा, वो शादी वादी तो नहीं करने वाले हैं। लेकिन हाँ, हर साल जिस तरह से ये रियलिटी शो में होस्ट की तरह नजर आते हैं, एक अच्छा खासा इनका परफॉर्मेंस रहता है, तो उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है एंड सितंबर मंथ से इसका शूट भी शुरू हो जाएगा। तो इस बार भी सलमान खान रियलिटी शो का फुल हिस्सा रहने वाले हैं। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। आपके किचन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा, उसके लिए क्या किया जाए बताती हूँ जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

0: आपकी नॉलेज आपकी जीत।
1: मस्टी मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
3: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
4: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। यू नो व्हाट, जब भी मैं इंडिया वीडियो कॉल पर बात करती हूँ ना, तो घर के बड़ों का एक सवाल होता है कि भैया खाना वगैरह अच्छे से खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तब काम करने का भी क्या फायदा। हाँ, तो चलो अगर आप भी सिंगापुर में रहकर ऑर्गेनिक ग्रोसरी ढूंढ रहे हैं, प्योरिटी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं, तो एक ही प्लेटफॉर्म है जो घर बैठे बैठे ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, दैट इज GGMartOnline.com। एंड यू नो व्हाट, इनके ड्राई फ्रूट एकदम आपको प्योर मिलेंगे, जो और कहीं पैकेजिंग में आपको बात नहीं मिलेगी जो इनके यहाँ मिलेगी। अगर हम रोस्टेड एंड सॉल्टेड पिस्तास की बात करें तो वो आपको 100 ग्राम मिल जाएंगे $2 में। हेजलनट आपको मिल जाएंगे जस्ट फॉर अ कॉफी पर्पस, या फिर आप शेक्स बनाते हैं तो हेजलनट 250 ग्राम $8 में। पम्पकिन सीड्स 250 ग्राम $5 में। रोस्टेड एंड सॉल्टेड कैलिफोर्निया आमंड्स 100 ग्राम आपको $2 मिल जाएंगे। मखाने हो गए, रीजन्स हो गए, कैश्यूज हो गए, क्या कुछ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। प्लस इनकी दो स्पेशलिटी है, बताऊं क्या? एक तो गुलकंद, हाँ जी, जो कि प्योर गुलाब का बना होता है और नेचुरल शुगर का बना होता है, आप एक माउथ फ्रेशनर की तरह इसे भी पिक कर सकते हैं। सेकंड, चलते फिरते आलतू फालतू कैंडीज खाने के बजाय अगर आप जामुन ट्राइंगल्स लेंगे जो कि 135 ग्राम $4 का आता है, तो वो भी आपको काफी नॉस्टैल्जिक फील कराएगा। जिस तरह से पुराने आम पापड़ आते थे ना, राइट, वैसे ही है ये जामुन ट्राइंगल्स। ओहो, तो बिना देरी के पहुंचिए GGMartOnline.com पर। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: हाँ।
1: या चुप रहूं
0: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है?
0: क्या है?

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टका
2: जोश में रहो।
0: कहीं भी आप जाइए, कुछ भी आप काम कीजिए, आपका एक छोटा सा टेक अवे तो होना चाहिए कि आपने इस चीज से क्या सीखा है। गलती भी करी तो वो भी एक सीख ही होती है कि अरे यार ये गलती कर दी, अब दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो जैसे ही आपको ना चीजों से टेक अवे लेने की आदत हो जाएगी ना, तो आप उतना ही ध्यान देने लगेंगे अपनी बातों पर। सो हेलो हाय, मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि कल हो ना हो मूवी काफी साल पहले हमारे बीच आई थी, है ना। और जब ये आई थी तो हमने सैफ अली खान और शाहरुख खान को इस मूवी में की रोल में देखा था। तो सैफ अली खान ने एक सवाल पूछ ही लिया था, मतलब आपस में जब कॉन्वर्सेशन हुई तो उन्होंने शाहरुख से पूछ लिया था कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारी सबसे पहली ऑडियंस कौन सी है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो सैफ का जवाब पता है क्या था कि वो आई थिंक कैमरा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन शाहरुख खान का जवाब था कि आपकी सबसे पहली ऑडियंस जो होती है वो है डायरेक्टर, जिसे स्टोरी टेलिंग सबसे बेहतर तरीके से पता है। अगर उसे आपका काम अच्छा लग रहा है, मतलब डायरेक्टर को ऑनेस्टली आपका काम अच्छा लग रहा है ना, तो अल्टीमेटली पब्लिक को भी आपका काम पसंद आने वाला है। तो इतने सालों से शाहरुख खान की ये बात सैफ अली खान को याद रह गई थी। और मुझे लग रहा है कि यार अब जो शाहरुख खान है ना, वो अपने आप में सीखने लायक एक बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुके हैं। उनसे कुछ ना कुछ टेक अवेज निकाले जा सकते हैं, राइट। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

कैसा होगा अगर अगली मूवी एक्साइटमेंट के कारण नहीं बल्कि डर के मारे हम देखने जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये 2.5 किलो का हाथ कभी भी आपके सर के ऊपर पड़ सकता है। Yes, I am talking about Sunny Deol. So hello, hi, मैं आज एक ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। And the point is कि Sunny Deol की जो अपकमिंग मूवी है लाहौर 1947, जिसमें ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान के बीच जो एक ग्लिचेस रहे हैं उन सारी चीजों को दिखाया जाएगा। But the point is कि दिखाया तो जाता है पर उनका नाम लिया जाता है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। That's why इस मूवी से जुड़ी हुई कोई कॉन्ट्रोवर्सी ना हो जाए तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है। हां जी, इसका नाम हो गया है बटवारा 1947। अब इसके बाद सनी देओल की क्या इसमें परफॉर्मेंस रहने वाली है, इस मूवी में वो कौन सा सेंसिटिव पार्ट है जिसको लेके थोड़ा सा डाउटफुल है कि रिलीज करा जाए ना किया जाए, उन सारी चीजों का एक कंक्लूजन निकाला जाएगा और इस साल ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर नजर आएगी। सो चलिए, मैं आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर कुछ और भी आपको बातें बताएगी। सो डोंट गो एनीवेयर।

0: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: भाई कितना वक्त हो गया है हमने वो मूवीज नहीं देखी जिसमें डबल रोल का जिक्र हुआ हो। हाँ जी, एक ही एक्टर को डबल टाइम बॉडी डबल करके या फिर आप कह लीजिए दो अलग कैरेक्टर में दिखाया गया हो, है ना। मतलब एक टाइम था जब बैक टू बैक मूवीज जो है डेविड धवन भी ऐसी बना रहे थे जिसमें डबल रोल हमें दिखा दिया गया, वो चाहे गोविंदा हो, सलमान हो, आमिर हो, हमने सबके ही कभी ना कभी डबल रोल देखे हैं। बट अब कौन सी मूवी ऐसी आने वाली है जिसको देखकर आप थोड़ा सा डबल रोल वाला नॉस्टैल्जिक एरा फील कर सकते हैं, बताऊं? हां जी, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी। अर्शद वारसी की अपकमिंग मूवी है जिसको एक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर कैटेगरी में काउंट किया जा रहा है, जिसका नाम है जीवन बीमा योजना। राइट, जैसा नाम है और कुछ वैसे ही कैरेक्टर भी इनका दिखाई देने वाला है। अब इस मूवी में अर्शद जो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव किरदार निभाने वाले हैं। एंड बाय द टाइम इतने वक्त के बाद एडिटिंग इफेक्ट्स यूज करके थोड़ा हाई टेक्नोलॉजी के साथ ये डबल रोल्स को किस तरह ऑप्ट किया जाता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताएगी कि जब एडिटिंग का जिक्र हुआ है तो इस मूवी का जिक्र निकल निकल कर आ रहा है। कौन सी मूवी और किससे जुड़े हुए बजट के ऊपर ट्रोलिंग चल रही है बताती हूँ जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल।

0: और सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्रिश मूवी का चौथा पार्ट बनाया जाए तो सिंगापुर का जिक्र आए? हो सकता है यार, हम लोग तो हमेशा ही वेलकमिंग है यार ऋतिक रोशन के लिए। जिस तरह से वो काफी साल पहले चाइना टाउन में उड़ते हुए दिखाई दिए थे, ठीक वैसे ही अगले पार्ट में ये सिंगापुर में नजर आए। बट क्या इनकी मूवी का बजट अलाउ कर रहा है? बताती हूँ। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड ऑफकोर्स इस मूवी से जुड़े हुए बजट वाले जो इश्यूज है ना, वो राकेश रोशन जी तक पहुंच गए। सो एज अ फिल्म मेकर उन्होंने बोल दिया है कि डेफिनेटली इस मूवी को 500 करोड़ में तो नहीं बनाया जा रहा है, पर हाँ हमने सोचा है कि 350 करोड़ तक एक कैप रखेंगे और थोड़ा बजट टाइट रखकर क्रिश मूवी का चौथा पार्ट बनाने की कोशिश करी जाएगी। और दूसरी तरफ हमें पता ही है ऋतिक रोशन को कोई आइडियल प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर नजर नहीं आ रहे हैं। लेट्स सी कब बारिश होगी, कब मोर नाचेगा, कब ये मूवी बनेगी, कब इसका बजट निकल कर आएगा। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सिंगापुर, प्रिपेयर फॉर इंपैक्ट।
3: 3, 2, 1।
4: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर।
0: अच्छा वो कौन सी मूवी थी जिसमें आयुष्मान खुराना जो है ना वो अंधा इंसान बनने का रोल कर रहे थे, मतलब वो अंधे नहीं थे बस उस मूवी में दिखाया गया था कि वो अंधे हैं और उन्होंने अपनी उन्हीं आंखों से मतलब दुनिया को तो लग रहा था ये अंधे हैं और उन्होंने किसी को मर्डर करते हुए देख लिया था और इस चीज को वो बता भी नहीं सकते और चीजें हो गई थी कॉम्प्लिकेटेड। वो कौन सी मूवी थी बताइए आप? हाँ हाँ डेफिनेटली आप उस मूवी का नाम समझ चुके हैं, दैट इज अंधाधुन। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। इस मूवी में आपने एज एन एक्ट्रेस राधिका आप्टे को देखा, नेगेटिव किरदार में तब्बू को देखा, इस मूवी का क्लाइमेक्स भी काफी शानदार था एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आपको पता है ओरिजिनल चॉइस इस मूवी की कौन सी थी? हाँ जी, रिसेंटली वरुण धवन ने इन चीजों को कन्फेस किया है। हाँ एक बार के लिए इमेजिन करना मुश्किल है बट इन्होंने बोला है तो झूठ क्यों बोला होगा। हाँ सो इस मूवी की ओरिजिनल चॉइस थी वरुण धवन, यानी कि आयुष्मान खुराना की जगह आपको वरुण धवन नजर आएंगे और राधिका आप्टे की जगह आपको नजर आती कंगना रनौत। हाँ जी वरुण धवन एंड कंगना का कॉम्बिनेशन बनने वाला था लेकिन बाय द टाइम फिल्म मेकर्स ने इन चीजों को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके सब कुछ बदल दिया। चलिए ऐसी बातें सुनकर लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

देखो आप इंटेलिजेंट तो हो और आपको फ्लॉन्ट करना ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद अगर आपने फ्लॉन्ट नहीं किया तो आपका इंटेलिजेंट होना किस काम का। हाँ जी, मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि आपका आईक्यू लेवल इतना अच्छा है कि आप सिर्फ सिंगापुर के बारे में ही नहीं, एंटरटेनमेंट सेक्शन के, लाइफस्टाइल सेक्शन के, इधर उधर जनरल नॉलेज क्या कुछ आपको नहीं पता, इवन हिस्ट्री में भी आपको इंटरेस्ट है। तो चलते फिरते हाँ जी मस्ती मीडिया नेटवर्क जो अपॉर्चुनिटी लेकर आया है उसमें पार्टिसिपेट कर लो। हाँ जी, वी आर इंट्रोड्यूसिंग द लायन सिटी चैलेंज, जिसमें आपका आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाएगा हमारे सवालों से या फिर डिफरेंट गेम्स से, और आपको बदले में मिलेंगे बहुत सारे प्राइजेस एंड गिफ्ट्स और कैश भी, राइट? तो पार्टिसिपेट करने के लिए टेक्स्ट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, लायन टाइप करके हमें 9151896 पे भेज सकते हैं, एंड क्विकली रिस्पॉन्स मिलेगा हमारी तरफ से। तो जो सवाल

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
4: हाँ जी जी,
3: 1/2 kg मसूर दाल,
4: जी जी,
3: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
4: जी जी।
3: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
4: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
3: क्या जी?
4: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
3: वाह जी, क्या बात जी।
4: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर,
0: यू नो वॉट, ऐसा होता है कई बार क्लास का स्टूडियस बच्चा जो है ना, वो आगे जाकर उतने बेहतरीन काम नहीं कर पाता जितना एक बैक बेंचर कर लेता है, लेकिन हर बार ये फॉर्मूला काम भी नहीं आता। हाँ जी, कई बार स्टूडियस बच्चे ही आगे निकल जाते हैं और निकलते जाते हैं। एंड अगर हम अमिताभ बच्चन जी की बात करें तो पढ़ाई लिखाई साइड में रखिए, उन्होंने एक्टिंग को ही इतना सीरियस लिया हुआ है कि अभी 80s की उम्र में भी ये उतनी ही मेहनत करते हैं जो काफी साल पहले जवानी में किया करते थे। हाँ जी, रिसेंटली इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये बात बताई कि सुबह के 4-4 बजे तक इन्होंने मेहनत करी है और अगले दिन की तैयारी करी है ताकि उस फिल्म के सेट पर जब ये पहुंचे ना तो हर शॉट अच्छे से दे पाए, याद करके दे पाए, रिविजन के साथ दे पाए। तो यही होता है यार, परफेक्शन की पहचान है ना। आजकल परफेक्शन किसे कहा जाता है, ये आप बस किसी मूवी के हिसाब से अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को तैयार कर ले, राइट। लेकिन दूसरा पार्ट ये भी होता है कि उस मूवी के डायलॉग्स आपको याद करने पड़ते हैं, हर तरह से चीजें डिलीवर करनी पड़ती है। चलिए, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर।

0: Are you ready?
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 91518963.
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
3: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
4: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
2: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Musti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for an application form.

0: देखो लोग ना बड़े बड़े सेलिब्रेशन चुपचाप कर लेते हैं, आपको बुलाते तक नहीं है, लेकिन इस जगह से आपको खुला इनविटेशन है और फायदा भी सिर्फ आप ही का है। सो हेलो हाय, मैं आरजे अनुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड राफेल सिटी सेंटर की तरफ से आप गुजरो तो लंच, डिनर, ब्रंच, व्हाटएवर जो भी आपको पसंद हो ना, आप शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट में एंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज अभी इन्होंने सेलिब्रेशन रखा हुआ है इस महीने 30 जून तक, 25th एनिवर्सरी का, जिसमें अगर आप वहां पहुंचे और आपकी टेबल का बिल $100 हुआ तो बहुत सारी डिशेस आप सिर्फ और सिर्फ $25 में परचेज कर सकते हैं, लाइक तंदूरी चिकन, फिश अमृतसरी करी, पालक पनीर, मतलब वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों ऑप्शंस आपके पास होंगे। सो क्विकली आप भी रिजर्वेशन करवा लीजिए एडवांस में www.shahimaharani.com विजिट करके। मैं आरजे अनुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, सेलिब्रेशन कंटिन्यू है गानों का, सो डोंट गो एनीवेयर।
1: Yo, boys, I am singing song. Soup song. Flop song.

0: to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
6: हाँ जी जी,
5: आधा kg मसूर दाल,
6: जी जी,
5: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
6: जी जी,
5: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
6: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
5: क्या जी?
6: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
5: वाह जी, क्या बात जी।
6: Order today from GG Mart, your personal grocer.
7: Everybody's talking about peace in the world. All we get to see is the pain and the hurt. We don't want no war. We don't want no fights, no guns, no bombs, no fists or the knives.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: क्या आप खुद से खुद की बुराई कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपने वो सारे लेवल्स पार कर लिए हैं जो कि इनिशियल टाइम पे आपको घबराहट देते थे, अब आप एक मैच्योरिटी के लेवल पर पहुंच चुके हैं। सो हेलो, हाय, मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड डायरेक्टर इम्तियाज अली अपनी फिल्मों से जुड़े हुए क्रिटिक्स इतनी क्लियरली एक्सेप्ट करने लगे हैं कि अब हमें लगता है कि हाँ, नाउ ही नोज कि क्या सही है और क्या नहीं। एक्चुअली रिसेंटली इन्होंने खुद की बनाई हुई मूवी जब हैरी मेट सेजल, हाँ जी, वही मूवी जिसमें सिर्फ एक अंगूठी ढूंढने के लिए लड़का और लड़की मिल जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इन्होंने बोल दिया है कि अगर आज के टाइम पे मैं खुद की बनाई हुई मूवी जब हैरी मेट सेजल को कोई पॉइंट्स दूंगा तो वो होंगे 10 में से 3। हाँ, इन्होंने अपने ही काम को थोड़ा सा बोल दिया है कि नहीं था यार, मजा नहीं आया, अपॉर्चुनिटी चली गई हाथ से। हाँ, बाय द वे, सिंगापुर वालों के हाथों में जो अपॉर्चुनिटी है वो अभी भी है। हाँ, तो मस्ती मीडिया नेटवर्क यानी हम रेडियो मस्ती आपके लिए लेकर आए हैं द लायन सिटी चैलेंज, जिसमें आप सिंगापुर के बारे में जनरल IQ जो क्वेश्चंस होते हैं और एंटरटेनमेंट की दुनिया, लाइफस्टाइल की दुनिया, बिजनेस की दुनिया, हर तरह के सेक्टर के बारे में अगर आप नॉलेज रखते हैं तो आप अपने IQ को जिताकर बहुत सारे गिफ्ट्स, कैश प्राइजेस जीत सकते हैं। सो डेफिनेटली पार्टिसिपेट कीजिए द लायन सिटी चैलेंज में, जिसके लिए आपको टाइप करना है लायन और हमें टेक्स्ट या व्हाट्सएप भेज देना है 9151896 3 पर। मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ बनी हुई थी, लेकिन अब मुलाकात होगी 5 PM ऑनवर्ड्स डियर मस्ती दिल से शो पर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए ड्यूटी पर। नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
2: चेक इट।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
2: कैफे कैफे। जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Musti Madness on Radio Musti 24/7.
3: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh Mehra.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
4: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
5: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
4: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for an application form.

वाकई ये गाना जब मैं सुनती हूँ ना, मुझे याद आ जाती है उन दिनों की दिल्ली में सर्दियों में, है ना, जब रजाई में लेट के और ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती चला करता था। ओ माय गॉड, मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूँ, बट डेफिनेटली आई somehow get those thoughts back in my mind. Good morning everybody, this is Renuka with you, welcome to the morning show. Serious headlines with a not so serious vibe, only on the morning show on Radio Masti 24/7. गुड मॉर्निंग सपना जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल पुराना गाना होगा तो आप ही के लिए होगा। चलिए चलिए जल्दी से मुझे बढ़िया बढ़िया खबरें दीजिए कि आज की जिंदगी में चल क्या रहा है, और मैं आपको बताऊंगी खबरें क्या हो रहा है दुनिया भर में। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा सौदा है, आप अपनी जिंदगी बताइए, मैं सारी दुनिया की बातें बताती हूँ रेडियो मस्ती 24/7 पर। वेलकम है जी, वेलकम आपका बहुत बहुत, बिल्कुल इट्स अ ब्यूटीफुल मंडे, आई एम श्योर मौसम और भी बेहतर हो जाएगा। पिछले हफ्ते आप जानते हैं 20 point something डिग्रीज पर पहुंच गया था यहाँ का मौसम सिंगापुर में, तो बड़ी हैरानी हुई, इसे फील नहीं हुआ मेरे को, फील फिर भी गर्मी और ह्यूमिडिटी लग रही थी, लेकिन न्यूज़पेपर्स ने कुछ ऐसा कहा तो मुझे लगा वाह भाई, मतलब मौसम वाकई बदल रहा है। लेकिन आज की शुरुआत करेंगे हम एक बढ़िया के बढ़िया से कोट के साथ में, जो हमेशा करते हैं। ये गाना भी बहुत प्यारा है, मोह मोह के धागे, सुनेंगे थोड़ी देर में। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं भाई कि आज का कोट ऑफ द डे क्या है, तो भाई मैं तो यही कहूंगी, इफ यू सी समवन विदाउट अ स्माइल टुडे, गिव देम योर्स। जी हाँ बिल्कुल, अगर कोई भी दुखी लगे, परेशान लगे, स्ट्रेस्ड आउट लगे, तो थोड़ा सा स्माइल उसकी शक्ल पे लेकर आना, एंड यू विल फील सो सो सो अमेजिंग, आई प्रोमिस यू दैट। रेडियो मस्ती 24/7, बढ़ते हैं हमारे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के पास, और फिर बस वापस आते ही लेट्स गेट रेडी for the news and the updates from across the world. This is Renuka with you. This is Radio Masti 24/7, a part of Masti Media Network. And yes, this is the morning show.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
0: चेक इट

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: Singapore, prepare for impact.
2: 3, 2, 1.
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: Singapore, bored ho, game khelni hai. Challenge accept karoge. Excited.
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
5: अर्जुन आएंगे
0: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे क

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: We are Indians. हम किसी से कम नहीं। मेरी बहन, मेरे साथ आजा। जब जब जाएंगे, लड़ेंगे, सबकी बाल बाल बाट लगा देंगे।

0: लगा देंगे।
1: वेलकम टू योर चिल जोन, मस्ती म्यूजिक कैफे, ओनली म्यूजिक, ओनली मस्ती।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट.

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats

0: सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे
1: पुरुष ही नहीं महापुरुष है महापुरुष
0: वेंसडे को मूड डाउन हो गया कोई बात नहीं हमारे पास उसका भी जुगाड़ है मिडवीक ब्लूज जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ फिल्मी बातें मस्ती मोमेंट्स थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7 आओ मूड चेंज करें
2: As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony, and positivity with the devotional hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti subah 6 baje se.

0: नाम सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: नाचने का मन है
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out. 3, 2, 1.
4: अब रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
5: Musti Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151896 3.
6: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी एड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

वाकई ये गाना जब मैं सुनती हूँ ना, मुझे याद आ जाती है उन दिनों की दिल्ली में, सर्दियों में, है ना, जब रजाई में लेट के और ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती चला करता था। ओ माय गॉड, मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूँ, बट डेफिनेटली आई somehow get those thoughts back in my mind. Good morning everybody, this is Renuka with you. Welcome to the morning show. Serious headlines with a not so serious vibe, only on the morning show on Radio Masti 24/7. Good morning Sapna ji, बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल पुराना गाना होगा तो आप ही के लिए होगा। चलिए चलिए जल्दी से मुझे बढ़िया बढ़िया खबरें दीजिए कि आज की जिंदगी में चल क्या रहा है, और मैं आपको बताऊंगी खबरें क्या हो रहा है दुनिया भर में। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा सौदा है, आप अपनी जिंदगी बताइए, मैं सारी दुनिया की बातें बताती हूँ रेडियो मस्ती।

तो बता दूं भाई कि आज का कोट ऑफ द डे क्या है. तो भाई मैं तो यही कहूंगी, इफ यू सी समवन विदाउट अ स्माइल टुडे, गिव देम योर्स. जी हाँ बिल्कुल, अगर कोई भी दुखी लगे, परेशान लगे, स्ट्रेस्ड आउट लगे, तो थोड़ा सा स्माइल उसकी शक्ल पे लेकर आना एंड यू विल फील सो सो सो अमेजिंग, आई प्रॉमिस यू दैट. रेडियो मसी 24/7. बढ़ते हैं हमारे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के पास और फिर बस वापस आते ही लेट्स गेट रेडी फॉर द न्यूज एंड द updates from across the world. This is Renuka with you. This is Radio Masti 24/7, a part of Masti Media Network. And yes, this is The Morning Show.

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
2: गाना चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती, व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस,
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
2: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
3: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: सस्याकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
2: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
1: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
2: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
4: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

वेलकम टू योर चिल जोन, मस्ती म्यूजिक कैफे, ओनली म्यूजिक, ओनली मस्ती।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh mein raho.
3: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: उड़े उड़े घूमे फिरे जैसे फिर की मचती है खलबली, फुलझड़ी है ये कुड़ी।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर शुरू हो चुका है हम सभी का एक बहुत ही खास शो जिसे हम कहते हैं डियर मस्ती दिल से। मैं हूं अंतरा, यहां पर आपके साथ बिल्कुल जुड़ चुकी हूं। अच्छा, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब कोई दोस्त आपसे आकर ये कहता है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो आप उससे कितनी इजीली ये कह देते हैं कि इट्स ओके यार, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। लेकिन जब वही गलती हम खुद करते हैं तो हम अपने आप को कितनी ज्यादा सख्ती से जज करते हैं। साइकोलॉजी में इसके लिए एक सिंपल सा टर्म है, इट्स कॉल्ड सेल्फ कंपैशन। और इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि खुद के साथ भी उतनी ही काइंडनेस से पेश आना जरूरी है जितनी काइंडनेस से हम दूसरों के साथ पेश आते हैं। लेकिन अजीब बात यह है, देखिए ना, हम अपने दोस्त को माफ कर देते हैं, अपने बच्चों को समझा देते हैं, अपने पार्टनर को सेकेंड चांस दे देते हैं, लेकिन खुद को हम बार बार वही सुनाते रहते हैं, मुझसे ये कैसे हो गया, मैं बेटर कर सकता था, लोग क्या सोचेंगे। और धीरे धीरे हम अपने ही सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। शायद आज की शाम, आज का ये शो इसी बात की याद दिलाने के लिए है कि हम सभी ना इम्परफेक्ट है, हम सभी सीख रहे हैं और हम सभी कभी ना कभी किसी ना किसी बात को लेकर दिल में यूं ही लेते हुए घूमते रहते हैं। इसीलिए हमने डियर मस्ती दिल से को क्रिएट किया, एक ऐसी सेफ स्पेस जहां पे आप अपने दिल की कोई भी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी लेबल्स के, बिना किसी डर के। ये 3 घंटे, ये स्पेस, ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके नाम। यहाँ कोई नेम्स नहीं लिए जाते, आपके लिए हम है डियर मस्ती और हमारे लिए आप है डियर लिसनर, बस इतना सा रिश्ता। बिल्कुल उन लिसनर्स की तरह जो हमें रोज अपनी कहानियां, अपनी उलझने और अपने दिल की बातें लिख कर भेजते हैं। अगर आप भी हमें लिखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए 9151896 पर या किसी भी ईमेल आईडी से हमें ईमेल भेज दीजिए listener@radiomasti.com.sg। और याद रखिए, कभी कभी सिर्फ अपनी बात कह देना ही हीलिंग की शुरुआत होती है। वेलकम वंस अगेन टू डियर मस्ती दिल से। मिलते हैं इस ब्रेक के उस पार ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: सिंगापुर
1: बोर्ड हो गेम खेलनी है चैलेंज एक्सेप्ट करोगे
2: एक्साइटेड
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
4: अच्छा सुनो जरा ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा
5: हाँ जी जी
4: आधा केजी मसूर दाल
5: जी जी
4: काजू किशमिश ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं
5: जी जी
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो
5: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर
4: क्या
5: जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप
4: वाजी क्या बात जी
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली चिट्ठी के साथ। डियर मस्ती, The relatives who have always spoken badly about my mom still keep coming back whenever they need something. My mom helps them every single time, and when I point it out, she ends up scolding me instead. I don't know how to make her understand that kindness should be given where it is valued. What should I do? Actually, आपसे आपकी ये चिट्ठी पढ़ते पढ़ते I so relate with you, जिसने भी ये चिट्ठी मुझे लिखकर भेजी है। सच बोलूं, मेरी कंप्लेन भी मेरी मॉम के साथ एग्जैक्टली इसी बात पे है। सच्ची बता रही हूँ। कभी कभी मुझे लगता है दैट ऑल मॉम्स आर लाइक द सेम, राइट? मैं भी उन्हें बोलती हूँ अपनी मम्मी को कि आपको याद है ना किसने क्या कहा था, और उनका स्टैंडर्ड से जवाब होता है अभी भी टिल डेट कि मैंने उस वक्त जो मुझे सही लगा वही किया। और फिर देन आई टेल हर दैट लेकिन किसने कहा है कि सिर्फ इसलिए चलते रहना है क्योंकि आप पहले भी ऐसा करती हुई आई थी। और फिर हम दोनों की डिस्कशन शुरू हो जाती है, एंड देन इट गेट्स इनटू अ फाइट, एंड या यू नो दैट, राइट? मुझे लग रहा है कि इस वक्त बहुत सारे लिसनर्स यही सोच रहे होंगे कि ये तो मेरे घर की बात हो रही है, क्योंकि सच में हम में से बहुत सारे बच्चे ये फील करते हैं जब कोई हमारे पेरेंट्स की काइंडनेस का फायदा उठाता है तो हमसे देखा नहीं जाता। हम उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने तरीके से। हम चाहते हैं कि वो भी थोड़ा सा अपने लिए खड़े हो, स्टैंड ले। लेकिन फिर सवाल आता है कि क्या करें।

0: के जहां।
1: हम भी पूछते रहते हैं ना कि ऐसा क्यों माँ, क्यों? क्यों का जवाब मैं आपको इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार आकर बताती हूँ। आप ये गाने सुनकर वापस आइए। स्टे विद अस ऑन डियर मस्ती दिल से, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: बिल्कुल, वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूं अंतरा आपके साथ, और अभी बस कुछ देर पहले अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जस्ट इन केस अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं, तो पहला लेटर जो है वो कुछ ऐसा था कि एक लिसनर ने लिखा कि कुछ रिलेटिव्स उनकी मॉम के बारे में काफी बुरा बोलते रहते हैं, उनकी काइंडनेस का फायदा उठाते रहते हैं, लेकिन फिर जब भी उन्हें जरूरत, मम्मी को जब जरूरत उनकी होती है तो उनकी मॉम जो है जरूर हेल्प करती है, बट बाकी सब उनका फायदा उठाते हैं। सो वेल, उनका सवाल जो है यही है कि मैं कुछ कहती हूँ तो मुझे डांट पड़ जाती है, बट अब आप बताओ कि मैं अपनी मॉम को कैसे समझाऊं कि काइंडनेस वहां होनी चाहिए जहां उसकी वैल्यू हो। सो माय डियर लिसनर, मुझे लगता है इस कहानी में दो लोग हैं, ठीक है, और आपको भी वो पता है, और दोनों ही अपनी जगह से प्यार की वजह से रिएक्ट कर रहे हैं। एक तरफ आप हो जो अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप उन्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकते, आपको लगता है कि लोग उनकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये बात कितनी अनफेयर है, एंड ऑनेस्टली ये फीलिंग बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन अब थोड़ा सा आपके मम्मी के पर्सपेक्टिव से भी इस बात को देखते हैं। कभी कभी पेरेंट्स ना दुनिया को हमसे थोड़ा सा अलग नजरिए से देखते हैं, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्चुअली। उन्होंने जिंदगी में ज्यादा रिश्तों को टूटते और जुड़ते हुए देखा है। वो हर बार हेल्प इसीलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें सामने वाले की हर बात पसंद नहीं होती, कई बार वो हेल्प करते हैं क्योंकि वो अपने वैल्यूज के हिसाब से जीना चाहते हैं और वैसे ही जीते हुए आए हैं। उनके लिए काइंडनेस किसी और के बिहेवियर का डिपेंडेंट नहीं होता है। वो सोचते हैं कि ये कौन है, मतलब मैं कौन हूँ, ये मेरे एक्शंस डिसाइड करेंगे, बट सामने वाला कैसा है वो उसकी जिम्मेदारी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी हमेशा सही है, बट ये भी नहीं है कि आप गलत हो, बस आप दोनों अलग जगह से इसी बात को देख रहे हो और शायद इसीलिए बात टकरा जाती है। अब अगर मैं आपको बोलूं तो मम्मी को ये मत समझाइए कि रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार गलत है, वो शायद पहले से ही ये बात जानती होंगी। उसकी जगह उन्हें ये बताने की कोशिश करिए कि आपकी आपको उनकी चिंता क्यों होती है। सी, लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। आपको आपको समझ नहीं आता, दैट इज वन वे ऑफ सेइंग इट, एंड दूसरा है कि मुझे आपकी फिक्र होती है, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस। इन दोनों बातों का इम्पैक्ट बहुत ही अलग है। एक डिफेंस क्रिएट करता है, दूसरा कनेक्शन। और एक बात, कभी कभी पेरेंट्स को ना एडवाइस नहीं चाहिए होती है, उन्हें सिर्फ ये फील करना होता है कि उनका बच्चा उनके साथ है। और आखिर में एक बात जो शायद हम सब भूल जाते हैं, जब हम भी छोटे थे मम्मी हमें हर छोटी चीज ना बहुत ही पेशेंटली समझाती थी, याद है, ये देखो देखो देखो एरोप्लेन आया आया आया और फिर स्पून लेकर सीधा मुंह में लैंडिंग। स्माइल आई ना, कितनी पेशेंस थी उनमें, कितना प्यार था, राइट। तो शायद जिंदगी के इस फेज में भी कभी कभी रोल को थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ सकता है। कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे प्यार से बात कर ले, उन्हें समझे, उनकी बात सुने। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी मॉम को बाउंड्रीज की जरूरत है, तो मे बी डोंट गिव हर अ लेक्चर, सिट विद हर, चाय बनाइए अच्छी सी दो कप, और प्यार से बताइए कि आप ये सब क्यों कह रही हैं, क्योंकि दुनिया में शायद कोई आपको उतना नहीं प्यार कर सकता जितना आपकी मम्मा आपसे करती हैं। एंड कभी कभी सबसे मुश्किल कॉन्वर्सेशंस भी प्यार से ही जीती जाती है। यह डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। अगला गाना ऑल द मम्मीज के नाम।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: बिल्कुल, वापस से स्वागत है आपका डियर मस्ती दिल से शो पर ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। और बहुत सारे चिट्ठियां इस सेफ स्पेस में शेयर की जा रही हैं आज की डेट में भी। और अब वक्त है हमारे अगले लेटर का। डियर मस्ती, आई हैव अ स्कार ऑन माय फेस एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैव वांटेड टू गेट अ प्रोसीजर डन टू रिड्यूस इट्स अपीयरेंस। एवरी टाइम आई ब्रिंग इट अप माय पेरेंट्स टेल मी दैट आई एम मेकिंग टू बिग एन इशू आउट ऑफ इट। They say it doesn't matter and that I should just accept it. But it matters to me. Am I being too sensitive? Okay, so dear listener, सबसे पहले तो thank you for writing this and trusting us. सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, what you are feeling is absolutely real. आपको अगर ये scar bother करता है, आप उसके बारे में सेल्फ कॉन्शियस फील करते हैं या आपको लगता है कि आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी फीलिंग्स वैलिड हैं। आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं, व्हेवर यू आर। और साथ ही मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ इसी के, आपका स्कार आपकी ब्यूटी को डिफाइन नहीं करता है, ना आपकी वर्थ को, ना आपकी पर्सनालिटी को, और ना ही ये डिसाइड करता है कि दुनिया आपको कैसे और किस नजरिए से देखने वाली है। लेकिन फिर भी अगर आप जेन्युइनली फील करते हैं दैट प्रोसीजर करवाना आपके कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट के लिए, खुद के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उस फीलिंग को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। अब इसी बात को आपके पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं। कई बार पेरेंट्स जब कहते हैं ना कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो एक्चुअली ये कहना चाह रहे होते हैं कि तुम जैसी हो वैसी ही बहुत अच्छी हो। उनकी इंटेंशन अक्सर प्रोटेक्ट करने की होती है, वो नहीं चाहते कि आप अपनी वैल्यू को एक स्कार के बेसिस पे जज करें। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब उनकी रीअश्योरेंस और आपकी रियलिटी एक दूसरे से मैच नहीं करती, और फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। आप समझाना चाहते हो, वो मना कर देते हैं, और फिर हम सब क्या करते हैं, रिबेल मोड पे चले जाते हैं। आप मुझे नहीं समझते हैं, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, और उस मोमेंट में बहुत सारी हर्टफुल बातें निकल जाती हैं। कई बार ऐसी बातें जो हम एक्चुअली में मीन भी नहीं करते हैं, नहीं, और फिर बाद में रिग्रेट होता है। खुद को भी तो हर्ट कर ही लेते हैं ना, सोच सोच के, और उन्हें भी। तो मुझे लगता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने से अच्छा है कि आप एक मे बी डिफरेंट अप्रोच ट्राई करें। ठीक है, आइडिया दूं, राइटिंग। राइटिंग में ना बहुत पावर होती है, ऐसा मैं पर्सनली इस चीज में बिलीव करती हूँ। बहुत इमोशन होता है उसमें। सो आराम से बैठिए, ठंडे दिमाग से जो है अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने हमें लिखा। उन्हें बताइए कि आप क्या फील कर रही हैं, क्यों ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, क्या चीज आपको हर्ट कर रही है, और आप उनसे किस तरह की अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करते हैं। कभी कभी जो बात आर्ग्यूमेंट्स में नहीं समझ आती, वो एक छोटे से लेटर में दिल तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसमें सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, उसमें इमोशंस होते हैं। और इमोशंस जब शांति से लिखे जाते हैं तो उन्हें पढ़ना आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है। सो गिव इट अ ट्राई, और फिर मुझे जरूर बताइएगा कि क्या हुआ। याद रखिए, चाहे आप सर्जरी करवाएं या ना करवाएं, आपकी वैल्यू उस डिसीजन से ना बढ़ेगी ना घटेगी, लेकिन आपकी आवाज, आपकी फीलिंग्स, वो जरूर सुनी जानी चाहिए। होप दिस हेल्प्स डियर लिसनर। यह है डियर मस्ती दिल से।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सिंगापुर, प्रिपेयर फॉर इंपैक्ट। 3, 2, 1।
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: ऐसा होता है कई बार दो ऐसी अच्छी चॉइसेस हमें ऑफर कर दी जाती हैं कि हमें समझ में नहीं आता इन दोनों में से ऑप्ट आउट क्या किया जाए। मतलब इतना हेल्दी कंपटीशन, दो अच्छी चीजें चूज करने का लकीली मिल पाता है। सो डेफिनेटली ऑन दिस नोट, डियर मस्ती दिल से शो पर, अच्छी चॉइस एक मेरे लिए ये है कि मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, और दूसरी अच्छी चॉइस ये है मेरे लिए कि मैं उन बातों का, उन सवालों का जवाब दे पा रही हूँ। सो डेफिनेटली हम सभी आरजेज आपके लिए एक सेफ स्पेस में बातें करते हैं, आपके लेटर्स पढ़ते हैं, इससे खूबसूरत चीज क्या हो सकती है। एनीवेज, अभी जो लेटर मेरे हाथ में है उसमें पता है क्या लिखा हुआ है कि हाय डियर मस्ती दिल से, मुझे आप ये बताओ इन दो चॉइसेस में से मैं कौन सी चॉइस को प्रेफरेंस में रखूं। पहली चॉइस ये है कि बहुत लविंग पार्टनर लाइफ में होना चाहिए, दूसरी चॉइस ये है कि बहुत समझदार पार्टनर लाइफ में होना चाहिए। आई नो ये दोनों चॉइसेस बहुत ही डिफिकल्ट है, और हर शख्स के अंदर आपको ये दोनों खासियत नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर आप लविंग या समझदारी की बात करेंगे तो नंबर वन पे मैं रैंक करूंगी समझदारी की, बिकॉज समझदारी जो है ना वो लॉन्ग लाइफ, हर तरह के डिसीजंस, वो चाहे एक माचिस की तीली खरीदनी हो या सिंगापुर में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो, समझदारी आपको हर तरफ काम आने वाली है अपने पार्टनर की। लेकिन सिर्फ लविंग लविंग लविंग थिंग देखेंगे तो एक टाइम के बाद बोरियत आ सकती है। सो डू प्रिफर समझदारी, उसके बाद प्यार मोहब्बत तो चलती रहती है लाइफ के अलग अलग स्टेज में।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
3: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: देखो, सिंगापुर आने के बाद मैंने एक शब्द की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा समझी है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की लाइफ में भी। दैट इज प्राइवेसी। हाँ जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, राइट? बट ठीक है, कभी कभी इन चीजों को थोड़ा साइड में भी रख देना चाहिए। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ है, एंड वो बातें जो कई बार हम कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं, वो बातें हमारे रिश्ते खराब कर देती है। तो कुछ चीजों के लिए आंखें मूंद लेनी चाहिए। सो अभी जो मेरे हाथों में लेटर है, उसमें पता है क्या लिखा हुआ है कि हाय डियर मस्ती, आप ये बताओ, जो एक लविंग पार्टनर मैरिड लाइफ रिलेशनशिप होती है, उसमें ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, और आजकल ट्रस्ट से ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज नजर आने लगे हैं। तो मुझे मेरे पार्टनर को अपनी लाइफ की प्राइवेसी देनी चाहिए या उसके फोन पासवर्ड्स जैसी चीजें पता करनी चाहिए और खुद की भी शेयर करनी चाहिए? सो ये जो कैलकुलेशन है, जिनके भी दिमाग में आया है, सबसे पहले ये बताओ, कोई मूवी देखकर या टेलीविजन या ओटीटी सीरीज देखकर तो नहीं आया? अंदर से आया है क्या? एक्चुअली आपके मन में डाउट है क्या? तब तो आप चीजें खुलकर बैठकर पूछ लो, लेकिन प्राइवेसी के नाम पर, और वो होता है ना इनसिक्योरिटी के नाम पर, जब आप पासवर्ड मांगने जाते हैं ना, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज कर देता है। हाँ, बातों बातों में, फ्लो फ्लो में आपको अपने मोबाइल में कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उनसे खुलवाना है या उनको बताना है, आप कहीं दूर हैं, आपका फोन उनके पास है, कुछ चीजें शेयर करनी है, और बातों बातों में आपने पासवर्ड बता दिया और वो लॉन्ग टाइम तक एक दूसरे के एक्सचेंज हो गए ना, ये ऑर्गेनिक तरीका बेस्ट है। लेकिन इंटेंशनली पूछना आपके इंटेंशंस को गलत बताएगा। सो स्टे अवेयर, बट हाँ, आंखें मूंद लीजिए, थोड़ी सी गलतियां साइड कर दीजिए, इतनी टेक्निकलिटीज को मत जाइए, रिश्ते ऐसे नहीं निपटते। फिलहाल ये गाने बहुत सारे सवालों के जवाब बनकर आ रहे हैं। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: माफ कीजिएगा, आज जरा आने में थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन देखिए ना शो अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ है। आधा पूरा? ओ, ये हमेशा बात मुझे कंफ्यूज करती है। वेलकम टू डियर मस्ती, दिल से।
1: नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स। डियर मस्ती, दिल से।
0: जी बिल्कुल, अभी तक आपको कम्प्लीटली बिजी और एंटरटेन रखा हुआ है। एंटरटेन तो मैं क्या ही कहूँगी, मैं तो यही कहूँगी कि आप ही की बातें करने में आप ही को पकड़ के अपने पास रखा हुआ है हमारी अंतरा जी और नूपुर ने। तो चलिए, अब टाइम हो गया है रेणुका आपका पूरी तरह से ध्यान रखे और उन चिट्ठियों को पढ़े जो आपने मेरे लिए भेजी हैं। खैर, आज मेरे हिस्से में दो चिट्ठियां हैं और मैं कहूँगी कि दोनों ही बहुत ही अहम बातों को एड्रेस करती हैं, एंड डेफिनेटली जो बातें उन्होंने उठाई हैं बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलिए, अगर आपने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, वेल आई डोंट इवन वॉन्ट कि आप में से किसी ने ऐसी बातें महसूस करी हो, फील करी हो, एक्सपीरियंस करी हो, लेकिन अगर आप किसी को जानते हैं जिन्होंने ऐसी बातें महसूस करी हैं, तो वेल दिस फर्स्ट लेटर आई एम गोइंग टू रीड आउट टू यू एंड आई होप वी कैन हेल्प दैट पर्सन टुगेदर। डियर मस्ती दिल से, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैरिड हूँ एंड आई एम अ मदर टू एन 11 ईयर ओल्ड सन। अभी रिसेंटली तक मुझे लग रहा था कि हमारे डिफरेंसेस जितने भी हों, बट माई हस्बैंड एंड आई वुड समहाउ फाइंड अ वे टू मेक थिंग्स वर्क। लेकिन पिछले 8 महीने में सिचुएशन जो है घर की बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है। कॉन्स्टेंट इमोशनल अब्यूज, इंसल्ट्स, हॉस्टिलिटी। इनफैक्ट फाइनेंशियली माई हस्बैंड हैज स्टॉप्ड कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड रिफ्यूजेस टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मुझे चिंता इस बात की रहती है दैट ही इज ऑल्सो बिकमिंग अग्रेसिव टूवर्ड्स आर चाइल्ड, एंड कभी कभी फिजिकली मारपीट भी होती है अपार्ट फ्रॉम वर्बली अब्यूजिंग हिम। एज अ मदर वॉचिंग दिस हैपन इज हार्ट ब्रेकिंग। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉन्स्टेंटली अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और अपनी लाइफ नॉर्मल फंक्शन करने के लिए भी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन हाल ही में एक नया इशू आया है। माई सन्स इंडियन पासपोर्ट नीड्स रिन्यूअल सून एंड हिज डिपेंडेंस पास रिन्यूअल इज ऑल्सो अप्रोचिंग। माई हस्बैंड इज रिफ्यूजिंग टू कोऑपरेट। कोई पेपर वर्क नहीं, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, पासपोर्ट रिन्यूअल में कोई हेल्प नहीं करना चाहते। माई परमानेंट एड्रेस इज स्टिल लिंक टू माई इन लॉज एड्रेस, जिसकी वजह से बातें और भी कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। At this point, I don't even know where to begin. My concern is not only the passport issue, but also the larger question of how to protect my child and myself when the person who should be supporting us has become the source of stress and fear. Kya practical steps le sakti hun? Thank you for writing to us. मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहली बात, आपके पासपोर्ट से, आपकी बातों से लगता है आप एक भारत की बेटी हैं, और अगर भारत की बेटी हैं तो आपको आगे बढ़ने से और अपनी हर परेशानी के हल को निकालने से कोई नहीं रोक सकता। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके आप ही के बारे में बात करेंगे कि क्या कर सकते हैं इस पूरी सिचुएशन से आपको सक्सेसफुली निकालने के लिए। Good evening, this is Renuka with you, Dear Masti, Dil Se.
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

वेलकम बैक रेडियो मसी 24/7 पर रेणुका आपके साथ और चल रहा है आपका फेवरेट शो विच इज डियर मस्ती दिल से बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है एंड आई टोटली बिलीव इन दैट। अभी ब्रेक से पहले हमने बात करी थी एक हमारी प्यारी सी लिसनर के बारे में, उनके लेटर के बारे में, जहां पर उन्होंने कहा कि वो काम करती हैं, उनका 11 साल का बेटा है, बट समहाउ द हस्बैंड इज बीइंग एब्सोल्युटली नॉन कोऑपरेटिव। ना तो घर में फाइनेंशियली अब हेल्प कर रहे हैं और ना ही बेटे का पेपर वर्क, पासपोर्ट रिन्यूअल, डिपेंडेंट पास इनका जो हो रहा है, उन सभी चीज़ों में भी बिल्कुल सहयोग नहीं दे रहे हैं। वॉट कैन शी रियली डू बाय वाइल ऑल्सो शी इज़ वरिड अबाउट द वर्बल एंड द फिजिकल अब्यूज़ जो उनके बेटे की तरफ उनके हस्बैंड कर रहे हैं। वेल, सबसे पहले मैं कहूँगी टू यू माई हार्ट टोटली गोज आउट टू यू। ठीक है, आप टोटली ये समझिए कि आप अकेली नहीं हैं। पासपोर्ट इशू जरूरी है, मैं मानती हूँ जरूरी है, लेकिन इस समय मुझे चिंता इस बात की ज्यादा है जो आपने उससे पहले कही, विच इज द इमोशनल अब्यूज, फाइनेंशियल निग्लेक्ट एंड फिजिकल अब्यूज टुवर्ड्स अ चाइल्ड। मैं एक बात बहुत ही क्लियर करना चाहती हूँ दैट डिसएग्रीमेंट्स इन मैरिज आर वन थिंग, लेकिन वायलेंस, इंटिमिडेशन एंड अब्यूज टुवर्ड्स अ स्पाउस और चाइल्ड आर नेवर एक्सेप्टेबल। The first priority here is safety, not paperwork. अगर कोई physical abuse है आपकी तरफ towards your son, then start documenting incidents carefully. Keep records of messages, photographs, अगर हैं कोई ऐसी dates, details. ये बात बढ़ाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, it's about protecting yourself and your child if support is needed later. Secondly, seek professional advice quickly. Don't try to navigate this alone. Speak to a family lawyer, a family service center or an organization जो support करे औरतों को, बच्चों को facing domestic difficulties. और अगर आप तैयार नहीं हैं इस major action को आज लेने के लिए, तो अपने options को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. It can be empowering. पासपोर्ट रिन्यूअल की बात है तो आप अज्यूम मत कीजिए कि डेड एंड हो गया है और आगे कोई रास्ता नहीं है। कॉन्टैक्ट द रेलेवेंट अथॉरिटीज़, इंडियन हाई कमीशन की बात है, पासपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं हैंडलिंग द डिपेंडेंट पास, उनके साथ अपने सिचुएशन शेयर कीजिए और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। डेफिनेटली आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के बीच में ऑफिशियल गाइडेंस मिलेगी। And finally, please stop carrying this burden as if it is yours alone to solve. The behavior of your husband is his responsibility. आपका फेलियर बिल्कुल नहीं है। और मैं इतना बताना चाहूंगी कि एक अच्छी पत्नी और अच्छे माँ के बीच में अगर आपको चूज करना पड़े, then a child's well-being, protecting the child, comes first for sure. एक स्टेप लीजिए एक टाइम पर, document, seek advice, explore your legal and administrative options, support system बनाइए अपने आसपास, and remember, asking for help is not weakness. Sometimes it's the strongest thing a parent can do. ये है डियर मस्ती दिल से, जहां हम मानते हैं कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन भी practical solution deserve करती है, not silent suffering. Write to us.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: थैंक यू टू शाही महारानी फॉर द स्पेशल ट्रीट।
3: थैंक यू टू शाही महारानी फॉर मेकिंग दिस मदर्स डे मोर स्पेशल।
4: थैंक यू शाही महारानी फॉर कंफर्टिंग एंड माउथ वाटरिंग फ्लेवर्स।
3: थैंक यू,
5: थैंक यू,
4: थैंक यू,
2: थैंक यू, वी लव यू।
6: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wedge and Non-Wedge dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: You know what? Digital media शायद हमें गाइड करने के लिए बना था और बना है, लेकिन ये हमें मिसगाइड करता जा रहा है. और इतने कंफ्यूजन, इतने क्वेश्चंस, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस निकल कर आ रहे हैं कि शायद धीरे धीरे ध्यान जाने तो लगा है. सो हेलो, हाय, मैं आरजे नुपुटियर, मस्ती दिल से शो पर आपके साथ है. एंड द पॉइंट इज कि क्या आप अपनी रियल लाइफ को रियल लाइफ के साथ मिक्स कर रहे हैं? नो नो नो नो, ये मॉकटेल कॉकटेल लाइफ के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ सकता है. अभी डियर मस्ती दिल से शो पर मेरे हाथों में जो लेटर आया है उसमें लिखा हुआ है कि ये जो दोस्ती होती है या दोस्ती के आगे वाला रिश्ता होता है या फिर रिलेटिव्स में भी जो हमारे आसपास हमारे गार्जियंस हैं उनमें हमें रेड फ्लैग कैसे दिखाई दे सकता है. मतलब कई बार ऐसे लाइफ में स्टेजेस आते हैं कि रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग हम मॉनिटर करने लगते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करें? देखो, रिश्ते चाहे कैसे भी हो, दूर से लेकर पास वाले, उनको सिर्फ आप एक ही टाइम में परख सकते हैं. बताऊं क्या? देखो, आप रफ सिनेरियो भी बना सकते हैं या फिर अपने लाइफ के उस टाइम को भी याद कर सकते हैं जब आप एक टफेस्ट दौर से गुजर रहे थे. देखो, अच्छे में तो सब आ जाते हैं. आप किसी को भी कॉल करके बोलेंगे कि अरे अरे सुनो ना, ये एक हैपनिंग सी पार्टी होने वाली है, ऐसा है वैसा है, सब आ जाएंगे. लेकिन जब आपकी लाइफ का एक टफ फेज चल रहा होगा, आप किसी को कॉल करना भी जरूरी नहीं समझ रहे होंगे, तब सामने से जो कॉल्स आते हैं कि यार तूने बहुत दिनों से कॉल नहीं किया, तू दिखाई भी नहीं दिया, कहाँ है, जरा बताना, मैं आता हूँ. तो ये वाला जो सिनेरियो होता है, ये जो रिश्ता होता है, वो चाहे दूर का हो, पास का हो, कैसा भी हो, वो होता है एक असली रिश्ता. आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत ही इजीली. हमेशा ब्लड लाइन वाले काम नहीं आते. डेफिनेटली ये गाने जरूर आपके काम आ रहे हैं जो आपके मूड को अपलिफ्ट कर सकते हैं. डियर मस्ती दिल से शो मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ.

अच्छा एक बात बताओ, आपने किसी ऐसे शख्स को नोटिस किया है जिसके पास बहुत एक्सपेंसिव सा सेलफोन है, बहुत एक्सपेंसिव सी कार है और वो उसको आए दिन फ्लॉन्ट करता हो? मतलब उस कार की चाबी और वो मोबाइल फोन हर मीटिंग में ऐसे ही सामने टेबल पर निकाल कर रख देता हो, तो आपको ऐसे इनसिक्योर वाली फीलिंग आएगी ना कि ठीक है आज मेरे पास नहीं है कल मेरे पास होगा, लेकिन दिखाने वाली क्या बात है, जरा मुझे बताओ तो। मतलब कई बार ये चीजें अनोइंग लगने लगती हैं, बिकॉज जब इंटेंशनली चीजें होती है ना तो सबको समझ में आता है। हाँ हाँ बिल्कुल समझ में आता है। एनीवेज डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरशी अनुपर आपके साथ है। अच्छा एक सिचुएशन मेरे सामने कई सारी बातें पढ़कर निकल कर आई है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पे तो बहुत अच्छी मोहब्बत दिखा रहे होते हैं। मतलब आप अपने रियल पार्टनर का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो आपकी हर पोस्ट पे लाइक करेंगे, हर पोस्ट पे कमेंट करेंगे, आपसे जुड़े हुए हर शख्स के डीएम का रिप्लाई करेंगे, या फिर आप उनके साथ कहीं डिनर पे जा रहे हैं तो सबके सामने आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन जब आप घर पे आते हैं, एक पर्सनल वक्त उनके साथ गुजारते हैं, तो वो एक अपनी अलग ही दुनिया में होते हैं, उनका बिहेवियर बदल चुका होता है। तो ऐसे लोग होते हैं एक्चुअली में रेड फ्लैग, मतलब उनसे थोड़ा सा हमें अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। और जब आप पहली बार ये चीजें फील करें ना कि ये दुनिया के सामने कुछ और है, मेरे सामने कुछ और है, तो जस्ट आस्क देम ऐसा क्यों है, वो जेन्युइनली ऐसा कर रहे हैं या फिर दुनिया के सामने अच्छा बनने के लिए आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उसी वक्त पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आप फेस कर लेंगे और बार बार ये जो डिस्कशन है वो नहीं आएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आजकल ये कैटेगरी बहुत निकल कर आ रही है, इसलिए मैंने सोचा आपसे शेयर कर।

0: ऐसे खूबसूरत गाने भी डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ शेयर हो रहे थे, हो रहे हैं और होते रहेंगे।
1: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। अभी थोड़ी देर पहले ना मैं वैसे हूँ अंतरा आपके साथ, और नूपुर थोड़ी देर पहले जो उसके पास लेटर आया था, काफी मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि प्यार ऑनलाइन ज्यादा सच होता है या ऑफलाइन। ऑनेस्टली टाइम्स हैव रियली चेंज्ड राइट, और शायद साथ साथ में हम भी। बट वेल, चलिए इसी बात पे सीधा चलते हैं अगली चिट्ठी की ओर। कुछ ऐसा है कि डियर मस्ती, आई हैव अ फ्रेंड जिसको मैं काफी पसंद करती हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा बात करती है। हर टॉपिक, हर कहानी, हर सिचुएशन में उसके पास कुछ ना कुछ कहने को होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम शी डजंट इवन रियलाइज कि उसने मुझे या किसी और को इंटरप्ट कर रखा है। हाउ डू आई हैंडल हर विदाउट मेकिंग हर फील बैड?

उनको कोई अंदाजा ही नहीं है, और मे बी किसी ने कभी कोई उनसे यू नो कुछ कहा नहीं, फीडबैक नहीं दिया. तो पहला स्टेप, अज्यूम गुड इंटेंट. हर अनोइंग हैबिट के पीछे बुरी नीयत नहीं होती. अब करते हैं प्रैक्टिकल बात. अगर वो आपकी बात कट कर देती है तो मे बी यू कैन स्माइल एंड पोलाइटली से दैट, यार एक सेकंड, एक बार मेरी बात तो पूरी करने दे, फिर तेरी बात पक्का सुन लूंगी पूरी तरह से. या फिर ओ होल्ड दैट थॉट, मुझे एक बार पॉइंट तो कंप्लीट कर लेने दे. या फिर अगर ग्रुप कॉन्वर्सेशन हो रही है तो फिर अरे वेट लेट मी ऑल्सो एड समथिंग टू दिस. नाउ द थिंग विद दीज लाइन्स आर कि ये कन्फ्रंटेशन वाली लाइन्स नहीं है, ये है पार्टिसिपेशन. और अगर फ्रेंडशिप क्लोज है तो आप किसी भी एक लाइट मोमेंट पे कह सकते हैं कि यार तुम्हें इतनी इंटरेस्टिंग हो कि कभी कभी हम सबको टर्न ही नहीं मिलता है, तुम ही बात करती रहती हो, सुनते रहते हो तुम्ही को. सो हंसी में कही हुई कई बार बात ना सीधा दिल तक पहुंच जाती है और फिर भी आपको नहीं लगता है इससे काम नहीं हो रहा, जस्ट हैव अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन विद हर, नॉट इन पब्लिक. एंड जब भी आप ये कॉन्वर्सेशन करे ऑनेस्ट वाली प्राइवेट, तो तुम हमेशा ऐसे करके सेंटेंस शुरू मत करना. उसकी जगह कहिए, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी बात पूरी नहीं हो पाती, मुझे थोड़ा बुरा लगता है. अपनी फीलिंग बताइए. कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी को देने की जरूरत ही नहीं है, उससे डिफेंस कम और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा आती है. सो वेल, आई जस्ट थिंक दैट मे बी आपकी फ्रेंड को शायद थोड़े से अवेयरनेस की जरूरत है. बस उतना ही फिलहाल मैं इसमें बिल्कुल समझ पा रही हूँ और वही बता सकती हूँ. दोस्त ये दोस्ती है, कोई पहेली नहीं है. Have an honest conversation and I'm sure that things are gonna be absolutely fine. सुनते रहिए डियर मस्ती दिल से.

मैं कई बार सोचती हूँ कि मेरे पास ही इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेटर्स क्यों आते हैं। वेलकम बैक, रेडियो मसी 24/7 पर चल रहा है आपका और हमारा फेवरेट शो। एक्चुअली हमारे से ज्यादा तो ये आपका शो है, डियर मस्ती दिल से। डियर मस्ती दिल से। ऑलराइट, मेरी ये अगली चिट्ठी जो है, It says, Hi dear Masti Dilse, I am writing about something that has been weighing heavily on my mind for a long time. मैं शादीशुदा हूँ, but क्योंकि हमारी शादी में कुछ परेशानियाँ रही हैं, including intimacy issues with my husband, I became emotionally close to someone else and eventually had a physical relationship with that person. और तभी से मैं ये tremendous amount of guilt carry कर रही हूँ. हर दिन I think about what I did. I question my values, my decisions, and whether I have done something that can never be forgiven. ये जो guilt है इतना ज़्यादा intense हो चुका है that it is affecting how I see my future. My husband and I are considering to have a child now, but I'm terrified. मैं ये सोचती रहती हूँ कि मेरे पिछले actions could somehow affect my future child. मैंने कुछ कहानियां सुनी है फ्रॉम पीपल हु से दैट व्हेन समवन बिहेव्स रॉन्ग इन रिलेशनशिप्स इट कम्स बैक लेटर इन लाइफ थ्रू सफरिंग इलनेस प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग देयर चिल्ड्रन। हाल ही में मैंने एक कहानी सुनी थी अबाउट समवन हु हैड मल्टीपल रिलेशनशिप्स एंड लेटर एक्सपीरियंस्ड अ ट्रेजेडी इन्वॉल्विंग देयर चाइल्ड। इवन सिंस देन आई हैव बीन फ्राइटन्ड दैट माई एक्शंस कुड समहाउ हार्म माई फ्यूचर चाइल्ड और देयर फ्यूचर। I even feel uncomfortable going to the temple sometimes because I feel ashamed and unworthy. I know many people may judge me, but I am being honest because I genuinely want help. How do I move forward? How do I deal with this guilt? And is there any truth to the fear that my past actions could somehow affect a future child? I'm carrying the burden of guilt. Well, रेडियो मस्ती 24/7 पर ये जो हमारा शो है ना डियर मस्ती दिल से, ये ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने लाता है जो हम सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड में एग्जिस्ट करती होंगी, लेकिन नहीं, असली जिंदगी की जो बातें हैं और आप हमारे साथ शेयर करते हैं वो उससे भी बड़ी बात है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा सा गाना आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है? और राइट आफ्टर दैट मैं वापस आके बात करूंगी अबाउट योर गिल्ट एंड अबाउट द सिचुएशन दैट यू आर इन। आई होप यू ट्यून्ड इन, इफ नॉट हम ये जवाब आपको बाय ईमेल वैसे भी भेजेंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे?
5: एक्साइटेड।
6: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text The Lion City Challenge to 9151-8963.

वेलकम बैक, स्वागत है आपका रेडियो मस्ती 24/7 पर। जरा थोड़े जो टेम्पो है ना, थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है, नहीं तो ये तो बहुत ही इंटेंस सा शो बन जाएगा। नहीं, इसमें पढ़ते हैं हम आपकी चिट्ठियाँ जो हमको आती हैं, मैसेजेस आते हैं, और उनके बीच जो आपकी बातें छुपी हुई होती हैं उनके लिए आप कभी कभी हमसे एडवाइस मांगते हैं। तो यही है वो शो जहाँ पर हम बिना आपका नाम लिए ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड बाय द वे, आई डू वांट टू शेयर कि इन द बैकग्राउंड वी डू हैव काउंसलर्स जो कि हमें हेल्प करते हैं अगर आपकी कोई भी ऐसा इशू हो जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो। राइट, दिस इज डियर मस्ती दिल से। नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स, डियर मस्ती दिल से। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उस चिट्ठी की जहाँ पर एक शादीशुदा महिला जो है उन्होंने हमको लिखा है और ये बोल रही हैं कि हस्बैंड के साथ परेशानियाँ होने की वजह से, शादी में परेशानियाँ होने की वजह से कहीं ना कहीं उनके कदम बहक गए थे। एंड ऑफ कोर्स शी बिकेम वेरी क्लोज टू समवन, एट द सेम टाइम ऑल्सो एंगेज्ड इन फिजिकल इंटीमेसी। और अब उन्हें ये डर है कि आगे बढ़कर कभी फ्यूचर में, क्योंकि अब उनके हस्बैंड और उनके बीच में बातें शायद थोड़ी बेटर हो रही हैं और वो सोच रहे हैं टू हैव अ चाइल्ड, तो उन्होंने सुना है कहीं से कि भाई ऐसी सिचुएशन में आगे जाके भगवान बदला लेता है आपके बच्चे से या उसके फ्यूचर से अगर माँ ने कोई ऐसी हरकत करी हो। सो लेट मी टेल यू, सबसे पहले आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी। इट टेक्स करेज टू राइट अ लेटर लाइक दिस। पहली बात तो मैं एड्रेस करना चाहूँगी आपका सबसे बड़ा फियर, इट्स नॉट हैविंग अ फिजिकल रिलेशनशिप इन द पास्ट। ऐसा कुछ नहीं होता है कि उसमें कर्स है, डैमेज है, या आपकी फ्यूचर हेल्थ या डेस्टिनी या वेल बीइंग ऑफ अ चाइल्ड यू मे हैव इन द फ्यूचर, ऐसा कुछ इम्पैक्ट हो। बच्चों को कभी पनिशमेंट नहीं मिलती फॉर द पास्ट मिस्टेक्स ऑफ देयर पेरेंट्स। ऐसा कोई मेडिकल साइंटिफिक बेसिस नहीं है टू बिलीव दैट अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप इन द पास्ट विल समहाउ हार्म अ फ्यूचर चाइल्ड। What I hear in your letter is not really fear about a future child. What I hear is unresolved guilt. और guilt जो है वो बहुत ही useful होता है when it helps us learn from a decision. लेकिन guilt harmful बन जाता है when it turns into lifelong self-punishment. बहुत से लोग आज जो सुन रहे हैं, I'm sure उनके भी relationships रहे होंगे शादी से पहले. Others may have made mistakes during marriage, या कभी कभी किसी ने बाउंड्रीज क्रॉस करी होंगी, बाद में लेटर वुड हैव रिग्रेटेड। और बीइंग ह्यूमन का मतलब ही यही होता है दैट वी आर ऑल इम्परफेक्ट। क्वेश्चन ये नहीं है वेदर यू कैन चेंज द पास्ट, क्योंकि आप वो नहीं बदल सकते। क्वेश्चन ये है वेदर यू आर विलिंग टू लर्न फ्रॉम इट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, एंड देन अलाउ योरसेल्फ टू मूव फॉरवर्ड। और मैं तो यही कहूंगी कि अगर ये गिल्ट आपके डेली लाइफ, कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप प्लान्स फॉर द फ्यूचर, हर चीज को इतना इम्पैक्ट कर रहा है, तो एक काउंसलर या थेरेपिस्ट से मिलिए। आपने हमें चिट्ठी लिखी है, बहुत ही अच्छा किया, लेकिन कभी कभी सेपरेटिंग जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम एक्सेसिव सेल्फ ब्लेम भी जरूरी होता है। सो एनीवन लिसनिंग टुडे, अ मिस्टेक मे बिकम अ पार्ट ऑफ योर स्टोरी बट इट डज नॉट हैव टू बिकम योर एंटायर आइडेंटिटी। माफी is not something we seek from others. Sometimes we need to learn to forgive ourselves. ये है डियर मस्ती दिल से, जहां पर हीलिंग बिगिंस व्हेन ऑनेस्टी मीट्स कंपैशन। स्टे ट्यून्ड।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: इसी के साथ में वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ अनदर हार्टफेल्ट एपिसोड ऑफ डियर मस्ती दिल से. डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. और यहाँ तो एक एक नहीं, तीन तीन अनजाने इंसान हैं जो आपको मिलते हैं हर ट्यूसडे ऑन डियर मस्ती दिल से, और आपकी बातों को समझते हैं, आपसे बात करते हैं. आज की कॉन्वर्सेशंस, वेल वी हैव टेकन अस थ्रू सो मेनी डिफरेंट इमोशंस एंड सिचुएशंस. वी स्पोक अबाउट अ मदर हु कंटिन्यूज टू साइड देयर रिलेटिव्स, और वो उनका एडवांटेज भी ले रहे हों, लीविंग हर ओन चिल्ड्रन फीलिंग हेल्पलेस. वी डिस्कस द डिफिकल्ट चॉइस बिटवीन अ पार्टनर जो बहुत ही डीपली लविंग हो या वन हु इज डीपली अंडरस्टैंडिंग, किसको पसंद करे. वी टॉक्ड अबाउट वेदर फोन पासवर्ड एक दूसरे के साथ शेयर करना वाकई प्यार की निशानी होती है, एक एक्शन होता है, या फिर ट्रस्ट मीन्स समथिंग मच डीपर देन शेयरिंग एक्सेस टू अ डिवाइस. हमने एक लिसनर से बात करी जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई वो बहुत ही गिल्टी हैं रिलेशनशिप्स, लोनलीनेस, इनविजिबल स्ट्रगल्स. हमने कितनी कितनी बातें कर ली ना आज के दिन में भी. एंड परहैप्स दैट्स व्हाई दिस शो रिमाइंड्स अस एवरी वीक दैट लाइफ इज रेयरली ब्लैक एंड वाइट. मोस्ट ऑफ अस आर नॉट चूजिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. हम तो चूज कर रहे हैं बिटवीन डिफिकल्ट एंड मोर डिफिकल्ट. हर चिट्ठी जो हमारे पास आती है, दैट्स अ रिमाइंडर दैट बिहाइंड एवरी स्ट्रॉन्ग पर्सन इज अ स्टोरी, बिहाइंड एवरी स्माइल इज अ स्ट्रगल, एंड बिहाइंड एवरी क्वेश्चन इज समवन सिंपली ट्राइंग टू फाइंड देयर वे. थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस आपकी कहानियों के साथ, आपकी वल्नरेबिलिटीज के साथ, योर डाउट्स एंड योर होप्स. थैंक यू फॉर राइटिंग टू अस, फॉर लिसनिंग एंड फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस ग्रोइंग डियर मस्ती दिल से फैमिली. और ये चिट्ठियाँ आने दीजिए, नहीं तो हमारा शो बंद हो जाएगा. अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, इफ यू स्टक, हार्ट ब्रोकन, फ्रस्ट्रेटेड, होपफुल, या सिंपली एक दूसरा पर्सपेक्टिव चाहते हैं, देन राइट टू अस. योर स्टोरी मे नॉट ओनली हेल्प यू, इट मे हेल्प काउंटलेस अदर्स हु आर साइलेंटली गोइंग थ्रू द सेम थिंग. और याद रखिएगा, यू डोंट हैव टू हैव ऑल द आंसर्स टुडे. समटाइम्स आपको सिर्फ करेज चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है टू आस्क द क्वेश्चन. तो चलिए अगले हफ्ते तक, टेक गुड केयर ऑफ योर हार्ट, योर माइंड एंड द पीपल यू लव. बी काइंड टू अदर्स, बट डोंट फॉरगेट टू बी काइंड टू योर सेल्फ टू. ऑन बिहाफ ऑफ माई होल टीम, दिस इज रेणुका साइनिंग ऑफ फ्रॉम आज का डियर मस्ती दिल से, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7, जहां हर सवाल मैटर करता है, हर इमोशन इज वेलकम, एंड एवरी कॉन्वर्सेशन बिगिन्स फ्रॉम द हार्ट. क्योंकि रेडियो पर बैठा हुआ एक इंसान कई बार आपको बाकी पूरी दुनिया से बेहतर समझ लेता है. अग्री? एब्सोल्युटली. टेक गुड केयर. बाय फॉर नाउ.

वाकई ये गाना जब मैं सुनती हूँ ना, मुझे याद आ जाती है उन दिनों की दिल्ली में सर्दियों में, है ना, जब रजाई में लेट के और ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती चला करता था। ओ माय गॉड, मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूँ, बट डेफिनेटली आई somehow get those thoughts back in my mind. Good morning everybody, this is Renuka with you. Welcome to the morning show. Serious headlines with a not so serious vibe, only on the morning show on Radio Masti 24/7. गुड मॉर्निंग सपना जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल पुराना गाना होगा तो आप ही के लिए होगा। चलिए चलिए जल्दी से मुझे बढ़िया बढ़िया खबरें दीजिए कि आज की जिंदगी में चल क्या रहा है, और मैं आपको बताऊंगी खबरें क्या हो रहा है दुनिया भर में। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा सौदा है, आप अपनी जिंदगी बताइए, मैं सारी दुनिया की बातें बताती हूँ रेडियो मस्ती 24/7 पर। वेलकम है जी, वेलकम आपका बहुत बहुत, बिल्कुल इट्स अ ब्यूटीफुल मंडे। आई एम श्योर मौसम और भी बेहतर हो जाएगा, पिछले हफ्ते आप जानते हैं 20 point something डिग्रीज पर पहुंच गया था यहाँ का मौसम सिंगापुर में, तो बड़ी हैरानी हुई, इसे फील नहीं हुआ मेरे को, फील फिर भी गर्मी और ह्यूमिडिटी लग रही थी, लेकिन न्यूज़पेपर्स ने कुछ ऐसा कहा तो मुझे लगा वाह भाई, मतलब मौसम वाकई बदल रहा है। लेकिन आज की शुरुआत करेंगे हम एक बढ़िया से कोट के साथ में, जो हमेशा करते हैं। ये गाना भी बहुत प्यारा है, मोह मोह के धागे, सुनेंगे थोड़ी देर में। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं भाई कि आज का कोट ऑफ द डे क्या है, तो भाई मैं तो यही कहूंगी, इफ यू सी समवन विदाउट अ स्माइल टुडे, गिव देम योर्स। जी हाँ बिल्कुल, अगर कोई भी दुखी लगे, परेशान लगे, स्ट्रेस्ड आउट लगे, तो थोड़ा सा स्माइल उसकी शक्ल पे लेकर आना, एंड यू विल फील सो अमेजिंग, आई प्रोमिस यू दैट। रेडियो मस्ती 24/7, बढ़ते हैं हमारे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के पास, और फिर बस वापस आते ही लेट्स गेट रेडी for the news and the updates from across the world. This is Renuka with you. This is Radio Masti 24/7, a part of Masti Media Network. And yes, this is the morning show.

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: सुनिए यादों का कारवा विद समर। याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यादों की पुरवाई के साथ लौट आया है आपका अपना समर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, लेकर यादों का कारवा। और बताइए आजकल क्या कर रहे हैं, बताइए हमारे फेसबुक पेज पर आकर बताइए, और अपनी यादों से हमें रूबरू कराते रहिएगा। और इस शो से जो आपको यादें आ रही हैं ना, उन यादों से हमें मिलवाते रहिएगा हमारे फेसबुक पेज पर आकर। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज का शो। जब से फिल्मों में आइटम सॉन्ग की डिमांड बढ़ने लगी, तब से आइटम सॉन्ग फिल्म की जान बन गए। या यूं कहूं कि जब अगर फिल्म हल्की सी लगने लगती थी तो उसमें एक आइटम सॉन्ग डाल दिया जाता था, ताकि लोग उसी आइटम सॉन्ग की वजह से खींचे चले आएं सिनेमा हॉल में। और ये फॉर्मूला कारगर साबित हुआ, लोग वाकई आइटम सॉन्ग की वजह से फिल्म देखने आ जाते थे, तो प्रमोशन का खर्च बहुत हद तक कम हो जाता था। एक ऐसा ही आइटम सॉन्ग आया जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह थे, मिस वर्ल्ड थी और शहंशाह के बेटे भी थे। भाई अब एक ऐसा सॉन्ग होगा तो उसका तो कहना ही क्या। क्या हुआ, आप चौंक गए? तो जनाब चौंकी मत, ये गाना था कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना, अलीशा चिनॉय, शंकर महादेवन और जावेद अली साहब की आवाज में। गुलजार की बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत, फिल्म बंटी और बबली से। तो यू गैस विट राइट, अभी हम बंटी और बबली के म्यूजिक की बात करने वाले हैं। वैसे इस फिल्म का डायरेक्शन किया था शाद अली साहब ने। आइटम सॉन्ग में ये पहला गाना है जिसमें बहू, बेटे और ससुर ने एक साथ काम किया है। इन शॉर्ट बोले तो ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन। हालांकि उस वक्त तक ये रिश्ता बना नहीं था। अच्छा, सबसे मजेदार बात यह है कि इस गाने की शूटिंग के वक्त ऐश्वर्या राय से ज्यादा अभिषेक बच्चन नर्वस थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि खुद के पापा के साथ केमिस्ट्री कैसे बिठाएं और कैसे रिएक्ट करें। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, रानी मुखर्जी और पुनीत इस्सर जैसे कलाकारों ने काम किया, और राज बब्बर भी थे। अभिषेक बच्चन के पिताजी तो राज बब्बर ही थे ना, पुनीत इस्सर बने थे रानी मुखर्जी के पिताजी। ये वही पुनीत इस्सर हैं जिनसे लड़ाई करते वक्त अमिताभ बच्चन साहब को कुली फिल्म के एक शॉट में चोट लगी थी। और जब इस चोट की बात आती है तो बहुत सारी यादें चली आती हैं, उसकी भी बात करेंगे जब हम इस फिल्म की बात करेंगे, कुली की बात करेंगे। फिलहाल हमारा कारवां 2005 से गुजर रहा है और हम बात कर रहे हैं बंटी और बबली की। क्या आप जानते हैं कि बंटी वाले किरदार के लिए पहले किसी और एक्टर से बात की गई थी? कौन थे वो, बता दूं? बैठे बताने के लिए हूं, बताऊंगा ही। आप कहेंगे नहीं बताओ तो भी बताऊंगा। बंटी के रोल के लिए पहले ऋतिक रोशन को अप्रोच किया गया था, लेकिन ऋतिक ने ये शर्त रख दी कि इस फिल्म को यश जी या आदित्य चोपड़ा डायरेक्ट करें। अच्छा, इसके अलावा जो कजरारे कजरारे गाना है ना, इसमें भी ऐश्वर्या की जगह पहले मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को लिया जाना था, पर अचानक से ऐश्वर्या को ले लिया गया। अक्की नरूला ने रानी मुखर्जी के लिए ड्रेस डिजाइन की थी इस फिल्म के लिए, और इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने जो पटियाला सलवार पहनी और कुर्ती जो पहनी, उसका ट्रेंड चल पड़ा था, फैशन में आ गया था, गर्ल्स ने खूब फॉलो किया। तो ये आलम था इस फिल्म की सफलता का। फिलहाल एक गाना सुन लेते हैं, क्या कहते हैं आप, इस फिल्म से और उस दौर की कुछ और फिल्मों से। सुनते रहिए यादों का कारवां समर के साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। बस मैं यूं गया और यूं आया।

0: 3, 2, 1.
1: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं, दिमाग की भी है।
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

कहा था ना यूं गया और यूं आया। लीजिए हाजिर है समर लेकर यादों का कारवां रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। अक्षय के फाइटिंग सीन में जितनी बढ़िया टाइमिंग रहती है उतनी बढ़िया टाइमिंग की कॉमेडी करते हैं वो, और इस बात को अक्षय ने कई फिल्मों में प्रूव किया। और जिस फिल्म का

करने जा रहा हूँ उसमें तो किया ही किया। प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी फिल्म गरम मसाला की मैं बात कर रहा हूँ। इस फिल्म में अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, नेहा धूपिया, रिमी सेन, राजपाल यादव और परेश रावल ने अपने अभिनय से सबको खूब हंसाया। प्रीतम का म्यूजिक था, समीर और मयूर पुरी के लिखे हुए गाने थे जिन्होंने धूम मचा दी थी। अदा जान ले वा अदा, सोनू निगम ने इस गाने को गाया था। अक्षय और प्रियदर्शन ने इस फिल्म से पहले एक और फिल्म में काम किया था, आप तो जानते हैं उस फिल्म का नाम, हेरा फेरी की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ ये फिल्म अक्षय कुमार को कॉमेडियन के तौर पर, एक अच्छी टाइमिंग के कॉमेडियन के तौर पर स्टैब्लिश कर रही थी, वहीं जॉन अब्राहम की ये फर्स्ट कॉमेडी फिल्म थी। इसी फिल्म का एक और गाना फलक देखूं, ये मयूर पुरी ने लिखा और सोनू निगम और उदित नारायण की आवाज में इसे आप सबने सुना। सुनने में बहुत अच्छा लगता है गाना। अक्षय कुमार की कॉमेडी लाजवाब थी और इसीलिए उन्हें अपने कॉमिक रोल के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला उस साल। वैसे शायद आपको ये पता ना हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कान जरा पास लाइए, नहीं भी लाएंगे तो मैं जोर से बोल दूंगा। ये फिल्म प्रियदर्शन की बनाई हुई मलयालम फिल्म बोइंग बोइंग का रीमेक थी। क्या बात बताइए मैंने आपको। पता है हमारे साउंड इफेक्ट्स लाइब्रेरी में बोइंग नाम का भी एक साउंड इफेक्ट होता है, वो कुछ ऐसे साउंड करता है, टोइंग। चलिए फिलहाल टोइंग टोइंग करते हुए ये वाले गाने सुन लेते हैं और उसके बाद लौट कर जब मैं आऊंगा तो आपसे यादों के कारवां में बहुत सारी बातें करूंगा, आपसे आपकी यादों के बारे में पूछूंगा। आप सुनते रहिए सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो, दैट इज रेडियो मसी 24/7 लाइव।

अरे भैया ये नो एंट्री का बोर्ड क्यों लगा रखा है? समर आ गया है, हटाइए बोर्ड को। वेलकम बैक, मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर यादों का कारवां। देखिए नो एंट्री की बात की है तो अब इसी फिल्म का जिक्र कर लेते हैं। नो एंट्री, इश्क की गली विच नो एंट्री। भाई एक तो इश्क की गली और ऊपर से उसमें भी नो एंट्री, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार? इश्क की गली में तो लोग फिसल जाया करते हैं, पता भी नहीं लगता उनको। वैसे गाना बड़ा कमाल है, इश्क की गली विच नो एंट्री, सोनू निगम और अलीशा चिनॉय की आवाज में। गाना अनीस बज्मी की फिल्म थी नो एंट्री, उससे सलमान खान थे इस फिल्म में, अनिल कपूर थे, ईशा देओल, फरदीन खान, बिपाशा बसु और सेलिना जेटली इस फिल्म में अभिनय कर रहे थे और सबने मस्त एंटरटेन किया, बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है। फिल्म में संगीत दिया था अनु मलिक ने और गाने लिखे थे समीर साहब ने। इस फिल्म में बिपाशा के ऑपोजिट संजय कपूर को साइन किया गया था पहले विलेन की भूमिका के लिए। अब आप सोच रहे होंगे संजय कपूर कौन? भैया मिस्टर इंडिया के भाई हैं संजय कपूर, बोनी कपूर के भाई, श्रीदेवी के देवर, कितने सारे रिश्ते बता दिए भाई। वो भी एक एक्टर हैं और उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, ऐसी भी क्या बात है। मैंने बताया था ना आपको राजा फिल्म के बारे में, राजा के हीरो थे वो। वैसे राजा माधुरी दीक्षित की वजह से याद रहती है लोगों को, संजय कपूर ने एक दो अच्छी फिल्में की, ऐसी बात नहीं है। हाँ यार मुझे दो एक फिल्में उनकी अच्छी लगी हैं और हर शेड का रोल किया उन्होंने, विलेन भी बने वो। अच्छा ये जो फिल्म थी ना, दरअसल ये फिल्म तमिल फिल्म चार्ली चैपलिन पर आधारित थी। पहले इस फिल्म में तब्बू को लेकर शूट करने का प्लान था पर अचानक से लास्ट मोमेंट पर तब्बू को हटाकर लारा दत्ता को ले लिया गया और तब्बू को इस बारे में कुछ पता भी नहीं चला, मतलब उनसे जिक्र ही नहीं किया गया, उनको ऑफर ही नहीं किया गया। जब फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर से तब्बू ने बात की तब जाकर पता चला कि अब वो फिल्म का पार्ट नहीं है। तब्बू की एक्टिंग जितनी दमदार होती है उतनी कमाल की ये शख्सियत भी है। तब्बू ने अभी तक शादी नहीं की है और तब्बू की बड़ी बहन भी फिल्म इंडस्ट्री में एक फेमस एक्ट्रेस रही है। आपको पता है क्या? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, फरहा नाज उनका नाम है, जो एक्चुअली बड़ी एक्ट्रेस थी, बड़ी हिट फिल्में दी उन्होंने अपने जमाने में, लेकिन उसके बाद तब्बू छा गई। फिल्म नो एंट्री का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इस फिल्म को जब सन 2002 में बोनी कपूर ने बनाना शुरू किया तो उस वक्त इस फिल्म को मिस्टर इंडिया मूवी के कैलेंडर शूट करना चाहते थे। कैलेंडर याद है आपको? सतीश कौशिक की बात कर रहा हूं मैं। दरअसल सतीश कौशिक इस फिल्म को अनिल कपूर, संजय दत्त और सलमान खान को लेकर बनाना चाहते थे पर इन तीनों कलाकारों के आपस में ट्यूनिंग नहीं बैठने से फिल्म की शुरुआत ही नहीं हो पाई। खैर जी फिल्म अनीस बज्मी ने बड़ी कमाल की बनाई है और जबरदस्त कॉमेडी है, अगर आप देखेंगे अकेले में अभी तो खिलखिला उठेंगे। फिलहाल तो एक गाना सुनते हैं इस फिल्म से और उन यादों को ताजा करते हैं जो इस गाने के साथ चिपकी हुई लिपटी हुई आ रही है अब तक। और आप भी रेडियो मसी 24/7 लाइव से यूं ही चिपके रहिए और सुनते रहिए यादों का कारवां विद समर।

0: Singapore, prepare for impact.
1: 3, 2, 1.
2: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
3: वेलकम बैक, मेरा नाम है समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर यादों का कारवां के जरिए आपसे मुखातिब हूं। और आज 2005 और 2006 में रिलीज फिल्मों की बातें आपसे कर रहा हूं। तो एक और फिल्म जो मुझे बहुत ही खूबसूरत फिल्म लगी, गौर फरमाइएगा, मैं कह रहा हूं खूबसूरत, जी वाकई बहुत ही सुंदर ये फिल्म है। इसका नाम था पहेली। वैसे पहेली हमेशा से दिमाग में एक बेचैनी और रोमांच पैदा कर देती है, और ऐसी बेचैनी और रोमांच शाहरुख खान के भूत के किरदार ने भी निभाकर पैदा की। और ये बेचैनी पब्लिक को इतनी पसंद आई कि ये फिल्म इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में नॉमिनेट की गई। फिल्म एक राजस्थानी कहानी पर बेस्ड है। विजयदान देथा, जो राजस्थान के एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, विजी उन्हें कहा जाता था, उनकी कहानी थी ये। दुविधा नाम से ये कहानी थी, और ये दुविधा इस फिल्म में बेहद खूबसूरती से दिखाई गई है। राजस्थान इतना कलरफुल है, और ये कलर्स अनिल मेहता की फोटोग्राफी में साफ साफ नजर आते हैं। इस फिल्म में बहुत सुंदर फिल्म है ये, मैं बार बार कह रहा हूँ सुंदर फिल्म है, देखेंगे तो जान जाएंगे। शाहरुख खान ने लीक से हटकर काम किया और बहुत कमाल काम किया। डबल रोल है उनका, एक भूत और एक व्यापारी। व्यापारी वही है, मारवाड़ी व्यापारी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए वाले। लाभ कमाने के लिए अपने घर परिवार से कितना भी दूर रहना पड़े रह लेंगे, लेकिन पैसा कमाएंगे, व्यवसाय करेंगे। वहीं भूत रानी मुखर्जी की जिंदगी में प्यार की कमी को खत्म करता है, और भूत से रानी मुखर्जी को प्यार हो जाता है। फिल्म के गाने, फिल्म का म्यूजिक कमाल का था, MM क्रीम का ये म्यूजिक था, बहुत बढ़िया गाने थे। फिर राधिकटी, इसे कैसे भूल सकते हैं आप, सुनिधि चौहान और सुखविंदर की आवाज में मस्त गाना। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो कठपुतलियां थी, इनको बैकग्राउंड में आवाज दी थी नसरुद्दीन शाह और उनकी धर्मपत्नी रत्ना शाह ने। गुलजार साहब गाने लिखते हैं तो कमाल ही हो जाता है, बिल्कुल वो कमाल हुआ भी इस फिल्म में। फिल्म से जुड़ी और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस फिल्म के आप कुछ गाने सुन लिए जाएं। लेकिन उससे पहले गानों का जिक्र और कर लेता हूँ। गाना एक था धीरे जलना धीरे जलना धीरे जलना, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में था ये गाना। और इसके अलावा श्रेया घोषाल, मधुश्री, बेला शिंदे और सोनू निगम की आवाज में वो गाना था ना, कंगना रे, बहुत ही बढ़िया गाना ये भी। फिल्म के बारे में और भी बहुत सारी बातें, पर मैं सोच रहा हूँ कि पहले कुछ गाने सुन लेते हैं, फिर इन बातों को आगे बढ़ाएंगे। आप सुनते रहे यादों का कारवां विद समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। मैं हाजिर होता हूँ इन गानों के बाद।

वेलकम बैक। आप समर को जानते हैं लेजेंड्स वाले समर के नाम से, तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ यादों को आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, फिल्मों से जुड़ी यादों को, फिल्मों की बातें कर रहा हूँ और आपसे आपकी यादों को शेयर करने के लिए कह रहा हूँ। हमारे फेसबुक पेज पर आकर आप जरूर हमें बताइए कि आपको इन फिल्मों से जुड़ी कौन कौन सी यादें आ रही हैं। अगली फिल्म की बात कर लें, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म, फिल्म ही नहीं उसके गाने भी, और गाने नहीं उसके डायलॉग्स भी कमाल कमाल कमाल थे। पहली भारतीय फिल्म जो सिनेमा घरों में और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंटरनेट के माध्यम से एक साथ रिलीज हुई। जानते हैं कौन सी थी ये फिल्म? राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म थी ये, विवाह नाम था इसका। सूरज बड़जात्या के डायरेक्शन में बनी थी ये फिल्म। फिल्म में शाहिद कपूर थे, अमृता राव थी, अनुपम खेर थे, आलोक नाथ थे और सीमा बिस्वास थी। श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाज में गाए गए गाने मुझे हक है के बोल लिखे थे रविंद्र जैन ने और म्यूजिक भी उन्हीं का था। रविंद्र जैन का क्लास काम है ये। अमृता राव और शाहिद कपूर की एक साथ ये चौथी फिल्म थी। और भी बहुत सारी बातें। फिल्म में शाहिद कपूर का नाम था प्रेम। दरअसल सूरज बड़जात्या की फिल्म के लीड कैरेक्टर का नाम हमेशा प्रेम ही होता है। इसकी शुरुआत सलमान खान से मैंने प्यार किया में हुई थी और वो इस फिल्म में भी सलमान खान को ही लेना चाहते थे। रविंद्र जैन की राष्ट्रीय प्रोडक्शन के साथ ये लास्ट फिल्म थी और राष्ट्रीय प्रोडक्शन के साथ रविंद्र जैन का ये सातवां कोलैबोरेशन था। जिस तरह से आरके फिल्म्स के लिए शंकर जयकिशन की जोड़ी थी ना, ठीक उसी तरह से राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए रविंद्र जैन साहब थे। वेल, फिल्म की कहानी बहुत ही सीधी सपाट है लेकिन दिल को छू लेती है। ऐसा लगता है जैसे सगाई होने के बाद दूल्हे दुल्हन के मन में जो कुछ चल रहा होता है, जो फीलिंग्स होती हैं, उन तमाम चीजों को बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही सादगी से पेश कर दिया गया। और जो भी लोग इस दौर से गुजर रहे होते हैं उन्होंने इस कहानी से अपने आप को रिलेट किया। इस फिल्म के गाने चाहे वो दो अजनबी हों या हमारी शादी में बाकी हैं हफ्ते चार, बाबुल सुप्रियो और श्रेया घोषाल की आवाज में गया गाना, ये बहुत ही कमाल का गाना था। एरोप्लेन में शूट किया गया। इस फिल्म में रविंद्र जैन ने संगीत दिया और बहुत कम लोगों को पता है कि रविंद्र जैन बचपन से देख नहीं पाते थे। इसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में जबरदस्त संगीत दिया, जैसे चोर मचाए शोर, फकीरा, राम तेरी गंगा मैली हो गई, हीना, ये आग कब बुझेगी वगैरह वगैरह। तो उनको सैल्यूट और उनके इस टैलेंट को आपके सामने भी पेश कर रहा हूं मैं इस गाने के जरिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर यादों का कारवां विद समर।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: सिंगापुर, जिसका था आपको इंतजार, जिसके लिए था आपका जिया बेकरार, लौट आया है वो लेकर किस्से और गाने बेशुमार।

0: यादों का कारवा विद समर, याद करेंगे गुजरे जमाने की फिल्में, किस्से और गाने। तो शामिल हो जाइए समर के साथ यादों का कारवा में, सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: मुझे तेरी सांसों में पनाह मिल जाए, मेरी जिंदगी तेरे इश्क में फना हो जाए। मिस्टर परफेक्शनिस्ट की दर्द भरी आवाज में फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पढ़ाकू एक्ट्रेस को बोला गया डायलॉग, हजारों इश्क के दीवानों को इश्क में फना होना सिखा गया। वेलकम बैक, मेरा नाम है समर, रेडियो 24/7 लाइव पर। आप समझ गए मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फना की। और पढ़ाकू एक्ट्रेस कौन है ये भी अब आप समझ गए होंगे। फिर भी एक हिंट देता हूँ, इनकी नानी बहुत उम्दा कलाकार रही है और इनकी मम्मी और मौसी भी। मौसी का तो कहना ही क्या, लाजवाब अभिनय किया उन्होंने, याद आया? नहीं, अरे कमाल कर रहे हैं आप, चांद सिफारिश जो करता हमारी हैं। शान और कैलाश खेर ने जिस फिल्म में गाना गाया उसकी हीरोइन कौन थी जिन्होंने कमबैक किया था इस फिल्म में? काजोल की बात कर रहा हूँ मैं। प्रसून जोशी ने लिखा था ये गाना और कमाल का म्यूजिक दिया था जतिन ललित ने। फना फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं, कुणाल कोहली के डायरेक्शन में बनी थी ये फिल्म फना। और ये जो गाना ना चांद सिफारिश जो करता हमारी, इस गाने के लिए कैलाश खेर साहब को बेस्ट मेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और गाया क्या था उन्होंने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मतलब खाली गाने में तड़का लगाने का उन्हें अवार्ड मिल गया। इस गाने को लिखने वाले गीतकार प्रसून जोशी जी को भी बेस्ट गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला उस साल। इस फिल्म में काजोल थी, आमिर खान थे, ऋषि कपूर, किरण खेर और ये वो लोग थे जिन्होंने इस फिल्म में मेन भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई और एक तरह से काजोल को एक जबरदस्त कमबैक मिला। शादी और बच्चे होने के बाद काजोल ने इस फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक किया था और ये कमबैक इतना जबरदस्त था कि काजोल बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड को अपने नाम तक कर ले गई। सन 2001 के बाद आई फिल्म कभी खुशी कभी गम के बाद से काजोल ने कोई फिल्म साइन नहीं की थी, फिल्म फना से उन्होंने कमबैक किया था। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको, इस फिल्म की जो कहानी है वो कश्मीर बेस्ड है, लेकिन इस फिल्म में जो पहाड़ दिखाए गए हैं बर्फ वाले वो कश्मीर के ना होकर पोलैंड के हैं। इस फिल्म की शूटिंग पोलैंड में की गई थी। पहले बर्फ वाले तमाम दृश्य जम्मू कश्मीर में ही फिल्माए जाने वाले थे, लेकिन वहां पर टेररिज्म थोड़ा सा ज्यादा था उन दिनों में, तो काजोल ने एक्टिंग करने से मना कर दिया था, इसलिए शूटिंग की लोकेशन को चेंज किया गया और इन तमाम सीन्स को पोलैंड में फिल्माया गया। इस फिल्म में काजोल और आमिर खान दूसरी बार साथ साथ काम कर रहे थे, इससे पहले इश्क में काम किया था उन्होंने। चलिए इतनी सारी बातें इस फिल्म से हो गई तो क्या बोलते हैं आप, सुनवा दूं एक बढ़िया गाना इस फिल्म से। सुनते रहिए यादों का कारवां समर के साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। बस मैं यूं गया और यूं आया।

0: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
1: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.

सोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो स्टेशन है ये, नाम है इसका रेडियो मजी 24/7 लाइव, और मेरा नाम है समर। आप सुन रहे हैं यादों का कारवां विद समर। वेलकम बैक। अब मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ वो

अनुराग बसु के डायरेक्शन में बनी थी फिल्म गैंगस्टर, जिसमें इमरान हाशमी थे, शानिया आहूजा और कंगना की, तो ये डेब्यू फिल्म थी और उन्हें बेस्ट डेब्यूटेंट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था फिल्म फेयर अवार्ड इस फिल्म के लिए। चलिए बैक टू द शोएब अख्तर वाली बात। शानी आहूजा वाला रोल पहले शोएब अख्तर को ऑफर किया गया था, पर शोएब ने साफ मना कर दिया कि उन्हें एक्टिंग लाइन में नहीं जाना है, कोई इंटरेस्ट नहीं उनका। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंगना वाला रोल पहले रीमा लांबा को ऑफर किया गया था। रीमा लांबा तो समझिए ना आप, मर्डर वाली रीमा लांबा। मैं बात कर रहा हूँ मल्लिका शेरावत की। मल्लिका शेरावत का असली नाम रीमा लांबा है। तो जब मल्लिका ने खुद ही फीस बहुत ज्यादा बताई, तो भट्ट ने, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने नए चेहरे को लॉन्च करने का प्लान बना लिया और कंगना रनौत ने इस फिल्म से एंट्री की। इस फिल्म की कहानी जितनी बढ़िया है, इसके गाने उससे भी ज्यादा बढ़िया हैं। सईद कादरी का लिखा हुआ गाना, जुबीन गर्क की आवाज में गाया गया गाना या अली, ये भी बड़ा कमाल का है, सीधे दिल को छूता है। इस फिल्म की शूटिंग साउथ कोरिया की राजधानी सोल में भी हुई थी। इसी फिल्म का एक और गाना है भीगी भीगी सी, ये मुझे बड़ा पसंद है, जेम्स की आवाज में गाया गाना, बहुत ही क्लासिक है। इस गाने में प्रीतम ने स्पेशल अपीयरेंस दी थी। वैसे प्रीतम गिटार उठाकर कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं, लेकिन इस गाने में पहली बार नजर आए थे। तो चलिए एक काम करते हैं, गैंगस्टर का ये गाना सुन लेते हैं और उसके बाद यादों की कारवां को और आगे ले चलेंगे, कुछ और फिल्मों का जिक्र करेंगे। स्टे कनेक्टेड।

लीजिए हाजिर हो गया हूँ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेकर यादों का कारवां। जाने से पहले मैं बात कर रहा था फिल्म पहेली की, उसका गाना भी सुनवाया था मैंने आपको और कहा था कि जब लौटूंगा तो इस फिल्म से जुड़ी कुछ और बातें भी करूंगा आपसे। तो ये ऐसा था कि इस फिल्म के गानों में जहां एक तरफ राजस्थानी फोक म्यूजिक की झनकार सुनने को मिलती है तो दूसरी तरफ राजस्थानी साहित्य के महान लेखक विजयदान देथा की लिखी हुई कहानी फिल्मी पर्दे पर एक अलग ही रूप में देखने को मिली थी। वैसे आपको बता दूं कि ये फिल्म 1973 में बनी फिल्म दुविधा का रीमेक थी पहेली। मणिकौल ने इसे डायरेक्ट किया था और जैसे कि मैंने कहा कि दुविधा नाम से ही विजयदान देथा जी ने ये कहानी लिखी थी। लेकिन पहली फिल्म का नाम पहले पहेली नहीं था, घोस्ट का दोस्त रखा गया, बाद में इसका नाम पहेली रखा गया। अच्छा, इस फिल्म के प्रोड्यूसर शाहरुख खान थे और अमोल पालेकर ने इसे डायरेक्ट किया था। बेहतरीन डायरेक्शन भाई, मैं तो बहुत तारीफ करूंगा इस फिल्म की। और अमिताभ बच्चन साहब ने कैमियो किया था, वो एक शेपर्ड बने थे, एक बकरी चराने वाले जो भूत को अपनी छागल में बंद कर लेते हैं और ले जाते हैं। इस फिल्म की शूटिंग 47 दिनों में पूरी हो गई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब को जब इस फिल्म के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि यार देखो राजस्थान में बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है तो मैं जा नहीं सकता। उनके सीन के लिए आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन राजस्थान से हजारों ट्रक रेत मंगवा कर राजस्थान के रेगिस्तान से वहां बिछा दी गई और अमिताभ बच्चन साहब के सीन बॉम्बे में ही शूट किए गए, रेगिस्तान वहां बना दिया गया। अच्छे फिल्म मेकर परफेक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे इस फिल्म में शाहरुख खान की बेस्ट फ्रेंड जूही चावला ने भी एक्टिंग की है, सुनील शेट्टी की पत्नी बनी है वो शाहरुख खान की भाभी। क्या हुआ, आपको भी किसी पहेली को हल करना है क्या? कुछ यादें आज भी पहेली बनकर बार बार सामने आ जाती हैं। तो एक काम करते हैं, उन यादों को शेयर कर लेते हैं दूसरे से। कहते हैं कि अनसुलझी पहेलियों को जब यूं शेयर करते हैं दोस्तों के बीच तो उसके हल भी निकल आते हैं। सुनते रहिए यादों का कारवां। बस मैं यूं गया और यूं आया। स्टे कनेक्टेड।

ओ भाई डीजे आ गया, ओए संभाल लो अपने आप को। वेलकम बैक, मेरा नाम तो समर है, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर एक बार फिर से आ गया हूं। और डीजे की बात क्यों कर रहा हूं आपको मालूम है? यादों का कारवां चल रहा है और मैं कुछ गुजरे जमाने की फिल्में आपके सामने लेकर आया हूं। और ये जो जमाना है ये बहुत ज्यादा पीछे का जमाना नहीं है, बहुत सारे लोगों ने आप में से हम में से ये फिल्में देखी हैं। मैं बात कर रहा हूं डीजे वाली फिल्म की, नहीं उसकी नहीं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजाने वाली नहीं, डीजे बोले तो दलजीत वाली फिल्म की, समझ गए आप? हां अजी, वो मस्ती की पाठशाला वाले डीजे, समझ गए आप? मैं बात कर रहा हूं रंग दे बसंती की, जिसका डायरेक्शन किया था राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने और फिल्म में डीजे का रोल प्ले किया था आमिर खान ने। मोहम्मद असलम, नरेश और ब्लेज की आवाज में था ये गाना, जिसे एआर रहमान ने तैयार किया, म्यूजिक उन्हीं का था, प्रसून जोशी ने लिखा। मस्ती की पाठशाला, आई लव इट, मुझे बहुत बहुत पसंद है ये गाना। पर आपको पता है कि आमिर खान ने डीजे के रोल को प्ले करने से पहले मना कर दिया था। जिस वक्त आमिर खान को ये फिल्म ऑफर की गई थी उस वक्त आमिर की उम्र थी 40 वर्ष और डीजे का कैरेक्टर था 25 साल का यंग स्टूडेंट। पर आमिर को लगा कि वो इस रोल को कर सकते हैं जब उन्होंने 10 किलो वजन कम किया और एक पंजाबी टीचर को अपॉइंट किया ताकि पंजाबी एक्सेंट वो सीख सके और बोल सके। कह देना कि किस्मत में कुछ अच्छा होना लिखा होता तो होकर ही रहता। आमिर खान से पहले डीजे का रोल शाहरुख खान को ऑफर किया गया था पर शाहरुख खान ने मना कर दिया। उसके बाद शाहरुख खान ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौड़ वाले रोल को करने की इच्छा जाहिर की पर बिजी शेड्यूल के कारण वो इस रोल को भी नहीं कर पाए और ये रोल आर माधवन के हिस्से में चला गया और इस कैमियो रोल ने माधवन के करियर को बदल कर रख दिया। फिल्म के गानों की बात करें तो इस फिल्म का वो गाना तू बिन बताए ले चल कहीं, ओ आई लाइक इट, बहुत ही बढ़िया है। मधुश्री नरेश अय्यर की आवाज और जो गहराई जो डेप्थ है उनकी आवाज में और इस गाने में वो कमाल है, काबिले तारीफ है। इस रोल में सुहा अली खान है, सुहा को तो आप जानते हैं, शर्मिला टैगोर की बेटी है वो और सैफ अली खान की बहन है। पर पहले ये रोल भी प्रीति जिंटा को ऑफर किया गया था पर प्रीति जिंटा ने साफ मना कर दिया और ये रोल मिला सुहा अली खान को और ये उनकी चुनिंदा हिट फिल्मों में से एक है। तो एक काम करते हैं, रंग दे बसंती कर लेते हैं, क्या बोलते हैं आप? सुंदर ये रेडियो मसी 24/7 लाइव पर समर के साथ। आपकी कुछ यादें अगर इस फिल्म से जुड़ी हुई हैं या ऐसी कुछ घटनाएं जो हमारी इन बातों से आपको याद आ रही हैं, हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। भाई ये यादों का कारवां है, अकेले हमसे ना हो पाएगा, आपकी यादें हमें चाहिए तभी तो ये कारवां आगे बढ़ेगा।

0: और रेस सिर्फ स्पीड की नहीं दिमाग की भी है।
1: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सिटी चैलेंज। Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा kg मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
2: क्या जी?
3: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
2: वाजी, क्या बात जी।
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

वेलकम बैक, मैं हूं समर रेडियो मजी 24/7 लाइव पर। यह है सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो स्टेशन जहां पर मैं आपसे मुखातिब हूं अपने शो यादों का कारवां के जरिए। मैंने जिक्र किया था कि एक फिल्म थी जो शोएब अख्तर को ऑफर की गई थी, नाम था उसका गैंगस्टर। शाइनी आहूजा वाला रोल पहले शोएब अख्तर को ऑफर किया गया था। ऐसी एक और फिल्म थी जो पहले वसीम अकरम को ऑफर की गई थी। जानते हो फिल्म कौन सी थी? नहीं, बताता हूं मैं। और ये रोल बाद में किसने प्ले किया? एनी गेसेस? इरफान खान ने। अभी हिंट दिया, कोई बताएगा कौन सी फिल्म थी? नहीं, चलिए अब मैं बता देता हूँ। इस फिल्म में गाना था, खूबसूरत है वो इतना कि कहा नहीं जाए, उदित नारायण की आवाज में। नीलेश मिश्रा ने गाना लिखा था, MM क्रीम का म्यूजिक था। बताइए कौन सी थी ये फिल्म? यू गेस इट राइट, रोग की बात कर रहा हूं मैं। रोग हिमांशु ब्रह्म भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म जिसमें इरफान खान और फेमस मॉडल एलिन हेमन ने मुख्य किरदार निभाए थे। दरअसल ये फिल्म हॉलीवुड मूवी लॉरा का रीमेक थी और इस फिल्म में जिस लड़की का मर्डर होता है उसी से पुलिस इंस्पेक्टर को प्यार हो जाता है। यूं तो इरफान खान ने बहुत अलग हटकर रोल प्ले किए हैं, पर इस फिल्म में निभाई गई पुलिस अधिकारी की भूमिका बहुत अलग थी। इस फिल्म का हर गाना अपने आप में क्लास है, बल्कि यूं कहूं कि संजीदगी से भरपूर है। अब कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि अगर इरफान खान वाला रोल वसीम अकरम करते तो क्या इतनी गहराई से कर पाते। मतलब आई कैन नॉट इमेजिन इवन, आई डोंट नो, शायद कर पाते। डायरेक्टर की नजर है, जो वो देखता है वो हम नहीं देख पाते। वैसे इस फिल्म का केके की आवाज में गाया गया गाना मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी बहुत ही हार्ट टचिंग है। तो एक काम करते हैं, कुछ गाने सुन लेते हैं इस फिल्म से। वैसे गाना सईद कादरी साहब ने लिखा है, और इन गानों के साथ ही मुझे इजाजत भी दे दीजिएगा, आपसे फिर मुखातिब होऊंगा मैं एक और शो के जरिए। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: रात अकेली है
1: रात अकेली है तो क्या हम तो

वाकई ये गाना जब मैं सुनती हूँ ना, मुझे याद आ जाती है उन दिनों की दिल्ली में सर्दियों में, है ना, जब रजाई में लेट के और ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती चला करता था। ओ माय गॉड, मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूँ, बट डेफिनेटली आई somehow get those thoughts back in my mind. Good morning everybody, this is Renuka with you. Welcome to the morning show. Serious headlines with a not so serious vibe, only on the morning show on Radio Masti 24/7. गुड मॉर्निंग सपना जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल पुराना गाना होगा तो आप ही के लिए होगा। चलिए चलिए जल्दी से मुझे बढ़िया बढ़िया खबरें दीजिए कि आज की जिंदगी में चल क्या रहा है, और मैं आपको बताऊंगी खबरें क्या हो रहा है दुनिया भर में। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा सौदा है, आप अपनी जिंदगी बताइए, मैं सारी दुनिया की बातें बताती हूँ रेडियो मस्ती 24/7 पर। वेलकम है जी, वेलकम आपका बहुत बहुत, बिल्कुल इट्स अ ब्यूटीफुल मंडे। आई एम श्योर मौसम और भी बेहतर हो जाएगा, पिछले हफ्ते आप जानते हैं 20 point something डिग्रीज पर पहुंच गया था यहाँ का मौसम सिंगापुर में, तो बड़ी हैरानी हुई, इसे फील नहीं हुआ मेरे को, फील फिर भी गर्मी और ह्यूमिडिटी लग रही थी, लेकिन न्यूज़पेपर्स ने कुछ ऐसा कहा तो मुझे लगा वाह भाई, मतलब मौसम वाकई बदल रहा है। लेकिन आज की शुरुआत करेंगे हम एक बढ़िया के बढ़िया से कोट के साथ में, जो हमेशा करते हैं। ये गाना भी बहुत प्यारा है, मोह मोह के धागे, सुनेंगे थोड़ी देर में। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं भाई कि आज का कोट ऑफ द डे क्या है, तो भाई मैं तो यही कहूंगी, इफ यू सी समवन विदाउट अ स्माइल टुडे, गिव देम योर्स। जी हाँ बिल्कुल, अगर कोई भी दुखी लगे, परेशान लगे, स्ट्रेस्ड आउट लगे, तो थोड़ा सा स्माइल उसकी शक्ल पे लेकर आना, एंड यू विल फील सो सो सो अमेजिंग, आई प्रोमिस यू दैट। रेडियो मसी 24/7, बढ़ते हैं हमारे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के पास, और फिर बस वापस आते ही लेट्स गेट रेडी for the news and the updates from across the world. This is Renuka with you. This is Radio Masti 24/7, a part of Masti Media Network. And yes, this is the morning show.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behan aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो। ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है? तुमको लेकर ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है? मुझे जान पे ले चलो। सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है।
2: जोश में रहो।
1: रात अकेली है।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

0: सीख ले।
1: बात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
2: वेलकम फ्रेंड टू द शो दैट नेवर एंड्स। आई हैव टेकन द चांस टू मेक यू डांस। यू विल मूव योर फीट एंड ग्रूव टू द बीट। सो देन Which beat would you like? दोस्तों कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? रॉम्बा?
3: No! No!
2: Samba?
3: No! No!
2: Rumba?
3: No!
2: Samba?
3: No!
2: Tequila?
3: No!
2: Tango?
3: No!
2: Charleston?
3: No!
2: Polka?
3: No!
2: No!
3: No!
2: तो फिर क्या हो? One!
3: No!

नहीं रहना, मुझे घर पे नहीं रहना, आज तेरे नाल मेरी सारी शाम गुजरनी नहीं, आज मुझे दुनिया की सुननी, मुझे तो है बस अपनी ही करनी।

0: रात भी बाकी है मगर अभी रात अकेली है।
1: What is your behavior of choice this evening? Do I sound a little cheesy?

से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

0: X amount of respect due to you.
1: जादू है नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

लगाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, मैं जट यमला पगला दीवाना।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

0: फ्लाइट टिकट खरीदे, दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। You know what? अभी रिसेंटली मेरे हाथों में किसी बच्चे की बुक आ गई है ना, मतलब बहुत ही छोटे छोटे स्टैंडर्ड की, मैंने ध्यान नहीं दिया कौन सा स्टैंडर्ड था, बट वो बुक देखकर इतना सैटिस्फाइंग लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि यार दोबारा पढ़ लिया जाए क्या, मतलब ज्यादा पढ़ लिख के तो यार काम ही मिल रहा है, थोड़ा पढ़ाई अढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो दोपहर का सोना भी मिल जाएगा, आराम से चिल एमआरटी पकड़ के कॉलेज या स्कूल जाओ, फिर लौट कर आओ, फिर थोड़े मजे करो, शाम को दोस्तों के संग टाइम स्पेंड करो, समथिंग लाइक दैट। हाँ, ये स्कूल एरा फायदे की चीज थी यार। सो हेलो हाई, मैं आज अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। वैसे ठीक है, अब आगे बढ़ ही चुके हैं तो फायदे की चीज ये है कि मैं आपके लिए एक ही जगह, एक ही छत के नीचे, एक ही शो पर, दैट इज मस्ती मॉर्निंग शो, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें बता देती हूँ, एंटरटेनमेंट इनसाइट दे देती हूँ जो आपको कहीं और नहीं मिलती। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मैं डेफिनेटली आने वाली हूँ इन अ शॉर्ट वाइल आफ्टर सॉन्ग्स, आपके लिए बढ़िया वाले लगा रही हूँ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behan aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: सिंगापुर बोर्ड हो, गेम खेलनी है, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? एक्साइटेड?
4: मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर प्रेजेंट्स द लायन सी

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर,
0: देखो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट डायरेक्टर्स ने कर लिए हैं नए नए आइडियाज को लेकर कि अब इस पे मूवी बनाएंगे उस पे मूवी बनाएंगे और इतना मोटा बजट रखेंगे, लेकिन मिला क्या उन्हें बदले में? लोगों

कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, या फिर बहुत ठंडा रिस्पॉन्स दिया। तो अब कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स ने ये कसम खा ली है कि भाई पुरानी मूवीज को ही थोड़ा सा नई पैकेजिंग के संग परोस दो, लोग देखने आ जाएंगे। तो क्या आज की पब्लिक इतनी इजीली मानने वाली है? आई डोंट थिंक सो। बट स्टिल आपको याद होगा 2001 में चांदनी बार मूवी आई थी, जिसमें तबू जो है ना वो लीड रोल में आपको नजर आई थी, राइट? अब इसी मूवी का सीक्वल आने वाला है। हाँ जी, रेड लाइट एरिया के ऊपर बेस्ड ये मूवी एक नए तरह से नई दिशा में आपको दिखाई जाएंगी। एंड चांदनी बार 2 जो मूवी होगी, इसमें तब्बू तो है ही, टेंटेटिवली अभी नाम निकल कर आया है कटरीना कैफ का भी। हाँ जी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम साउंड्स एक्साइटिंग, यू डोंट थिंक सो? हाँ, मतलब एक तरफ तब्बू, एक तरफ कटरीना, ओ माय गॉड। आरजे रूपर मस्ती बॉलिंग शो पर।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। You know what? लिस्ट बहुत ही लंबी है, लेकिन अगर आप वो लिस्ट अचानक से किसी मॉल में जाके सोचने लगेंगे तो याद नहीं आने वाली। सो व्हाई नॉट घर में टहलते टहलते, किचन के काम करते करते, आप अपने कार्ट को बढ़ाते जाओ और बस घर बैठे बैठे अपनी पूरी ग्रॉसरी, ड्राई फ्रूट्स, ए टू जेड फ्रूट्स से लेकर वेजिटेबल्स आप ऑर्डर कर लो। कहाँ? GGMartOnline.com पर। हाँ जी, किसी भी तरह के आपको नट्स चाहिए, रोस्टेड या सॉल्ट, पिस्तास चाहिए, पम्पकिन सीड्स चाहिए एंड कैश्यूज चाहिए, सॉल्टेड कैलिफोर्निया आमंड्स चाहिए, ये पूरी रेंज आपको ऑर्गेनिक तरह से GGMartOnline.com पर मिलेगी। एंड यू नो व्हाट, उनका एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर्ड आप कह सकते हैं ट्राइंगल, दैट इज जामुन ट्राइंगल्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। एंड $4 के करीबन उसका एक बॉक्स आ जाएगा, जो आपको बढ़िया ही काला कट्ठा टाइप जो है ना वो स्वाद देकर जाएगा। सो डेफिनेटली बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो आपको नॉस्टैल्जिक फील कराएंगे एंड ऑर्गेनिक प्योर फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, उसके लिए आपको पहुंचना होगा GGMartOnline.com। आज जो नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है और मैं पहुंच रही हूं गानों तक, आप मेरे पीछे पीछे आइए।

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा केजी मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
2: क्या जी?
3: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
2: वाह जी, क्या बात जी।
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
4: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: दस का बीस।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
3: Singapore, prepare for impact.
4: 3, 2, 1.
5: Musty Media Network Singapore presents the Lion City Challenge. Singapore's smartest game show, where knowledge wins. And you too. To participate, text the Lion City Challenge to 9151-8963.
6: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
7: हाँ, आजकल कंगना रनौत बहुत ज्यादा सेंसिबल बातें कर रही हैं। कहीं ये मतलब तो नहीं कि उनकी मूवी आने वाली है, मतलब आने वाली क्या है, आ ही चुकी है भारत भाग्य विधाता। और जब मूवी आ जाती है ना तो एक्टर्स बहुत ही सटल बात करते हैं, मतलब उतनी ही बात करते हैं जिसमें उनका भी भला हो और आसपास वालों का भी। डोंट यू थिंक सो? आरजेनपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड अगर हम कंगना रनौत की बात करें तो उन्होंने इस बार दीपिका पादुकोण की तारीफ करी। उन्होंने बोला कि यार दीपिका की तरह कोई और एक्ट्रेस हो ही नहीं सकती, जिस तरह से एक बोल्ड तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने चाहिए मार्केट में रहते रहते, दीपिका ने ऐसा किया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूरी भी है। ओ माय गॉड। एनीवेज मैं आज रिपोर्ट मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

अच्छा, आप पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं, लेकिन जब कोई आपसे ये सवाल कर देता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप आज भी थोड़ा हेजिटेट फील करते हैं। अरे करते हैं यार, खुद के बारे में बताना अच्छा भी नहीं लगता है, और खुद की तारीफ हर बार खुद से हो भी नहीं पाती। डोंट यू थिंक सो?